कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा, अराग मारू बाणी रविदास जीओ की। एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छदर तरे रखाओ, जाकी शोत जगत को लागे, तां पर तुही ठरे, नीचे ऊच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे, नाम देव कबीर तलोचन, सदना सैन तरे, तै रविदास सुनो रे संतो, हर जी उते सवे सरे, मारू सुख सागर सुर तर चिंता मान, काम ते बज जाके रे, चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, नवृद कर तलता के, हर गा हर ना जब सरसना, अवर सब शाड बचन रचना रहाओ, नाना ख्यान पुराण वेद वेद, चौतीस अक्षर माघी, व्यास विचार कहो परमार्थ, राम नाम सरनाघी, सहज समाध उपात रहत होए, बड़े पाग लिव लागी, कहे रविदास उदास दास मत, जन्म मरण पै भागी, तुखारी संत महला पहला, बारे माहा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद, तू सुन किरत करम्मा पुरब कमाया, सिर सिर सुख सहम्मा देसो तू पल, हारचना तेरी कागत मेरी, हर बिन कड़ी ना जीवा, प्रेबाज दुहेली गोए ना बेली, गुरमुख अमृत पीवा, रचना राज रहे निरंकारी, ब्राह्मण कर्म सुकर्मा, नानक पंथ निहाले सा तन, तू सुन आत्म रामा, बाबी गा प्रयो बोले, कोकल बाणिया सा तन सबरस चोले, अंक समाणिया हर अंक समाणी जा प्र पाणी, सा सुहागण नारे, नव कर थाप मैल कर ऊचो, निज कर वास मुरारे, सब तेरी तू मेरा प्रीतम, निसबसर रंग रावे, नानक प्रयो प्रोचवे बबीह, कोकल शब्द सुहावे, तू सुन हरस पिन्ने, प्रीतमे अपने, मन तन रब तर बन्ने, कड़ी ना बिसरे, क्यों कड़ी बिसारी हो बलिहारी, हौ जीवा गुण गाए, ना कोई मेरा हो किस केरा, हार बिन रहन ना जाए, ओढ़ गई हर चरण निवासे, पए पवित्र शरीरा, नानक दृष्ट दीर्घ सुख पावे, गुरशब्दी मन तीरा, बसे अमृत तार, बूंद सुहावनी, साजिन मिले सहज सुपाए, हर स्यों प्रीत बनी, हर मंदर आवे जा प्रभावे, तन ऊबी गुण सारी, कर कर कंतर वे सुहागण, हों क्यों कंत वसारी, उन कन शाए बरस सुपाए, मन तन प्रेम सुखावे, नानक वरसे अमृत बाणी, कर कृपा कर आवे, चेत बसंत फला पावर सुहावड़े, बन फूले मंज बार, मैं फिर कर बहौड़े, फिर कर नहीं आवे तन क्यों सुख पावे, बिरे बरो तन छीजे, कोकल अंब सुहावी बोले, क्यों दुख अंक सहीजे, पावर भवंता फूली डाली, क्यों जीवा मरमाए, नानक चेत सहज सुख पावे, जे हर वर कर तन पाए, वैसाख भला साखा वेस करे, तन देखे घर द्वार, आप हो दया करे, तर आओ प्यारे दुत्तर तारे, तुत बिन अड ना मोलो, कीमत कौन करे तुत पावा, देख दिखावे ठोलो, दूर न जाना अंतर माना, हरका महल पछाना, नानक वैसा की प्रपावे, सुरत शब्द मन माना, माहो जेड़ पला प्रीत क्यों बिसरे, थल तापे सर पार, सातन बिनो करे, तन बिनो करेंदी गुणसारेंदी, गुणसारी प्रपाव, साचे महल रहे बैरागी, आवन देता आवा, निमाणी नितानी हर बिन, क्यों पावे सुख महली, नानक जिड़ जाने थी जैसी।

चतर सुजान विधाता चंचल जगत सुबाया ज्ञान ध्यान गुण अंक समाने प्रापाणे ता पाया गीत नाद कवत कवे सुन राम नाम दुख पग नानक सातन ना प्यारी अब भक्ति पिर अग ओह तुखार पड़े वाण त्रैण रस सुख।

सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझावो तुखारी शांत महला चौथा एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर सबदी हौ सतगुर कै बलिहारिये। सतगुर आगे सीस पेट देओ जे सतगुर साचे पावे, आपे दया करो प्रदाते नानक अंक समावे। तुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाध

मार्ग पंथ चले गोर सतगुर संग सिखा प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब होआ खबर पई संसार आए त्रै लोआ देखने आए तीन लोक थुर नर मुनजन सब आया जिन परसिया।

गुर बचन नानक हर भगत लही, मिल आए नगर महाजना, गुर सदगुर ओट गही, तुखारी शांत महला पंजवा, एक ओंकार

राम राम रमोरे अंतर का अवमान जोर तू केश केश के जानता यो दूर करो आपन गौरे जन नानक कौहर दयाल हो स्वामी।

पंच दास तीन दोखी एक मन अनाथ नाथ राख हो किरपाल रखाओ अनक जतन गमन करो खड़ कर्म जोत ध्यान धरो उपाव सगल कर हारियो नह उठे बिकराल सरन बंदन करना पते पाव हरण हर हर हर हरे एक तू ही दीन दयाल प्रभ चरण नानक आस।

तिन ही लोग सुपारी संतो बन जा नाम गोविंद का ऐसी खेप हमारी हर के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़िया निर्मोल छूट गई संसारी रगाओ ताते लाए तौ सच लागे साचे के व्योहारी साची बस्त के पार चलाए पहुंचे जाए पंडारी आप।

रूप रंग रेस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालो, प्राणी हर जप जन्म गयो, साच शब्द बेन कहो ना छूड़स, बिरता जन्म पयो रखाओ, तन में काम क्रोध को ममता, कठिन पीर अद फारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, एन बेद तार तू तारी, बहरे करण अकल पई होची, साबद सहज नहीं बूझया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध न सूझया, रहे उदास आस निरासा, सहज ध्यान बैरागी, परमत नानक गुरमुख छूड़स, राम नाम लेव लागी, भैरो महला पहला, ढूंढी चाल चरण कर खिसरे, तुचा दे कुमलानी, नेत्री तुंद करण पै बैरे, मनमुख नाम न जानी।

का आकारा काटवद को करे बिचारा कहत नानक इहो जियो कर्म बंद होई बिन सतगुर पेटे मुक्त न होई। भैरो मोहल्ला तीजा जोगी गरीब पंडित पेख तारी ए सूते अपने अहंकारी माया मदमाता रहे आसोए जागत रहे नामूसे कोए रहाओ तो जागे जिस सतगुर मिले पंच दूत ओ वसगत करे सो जागे जो तत विचारे आप मरे अवरा नहीं मारे सो जागे जो एको जाने प्रकृत छोड़े तत पछाणे।

मुन केते बिन शब्दे सुरत न पाई, त्रै गुण सबे रोग वे आपे ममता सुरत गवाई। एक आपे काड लए प्रभ आपे गुर सेवा प्रभ लाए, हर का नाम निधानु पाया सुख वसिया मन आए। चौथी पदवी गुरमुख वर्त है तेन निरकर वासा पाया, पूरे सतगुर कृपा कीनी विचों आप गवाया। एक सकी सिरकार एक जिन ब्रह्मा बिसन रुद्र उपाया, नानक निचल साचा एकू ना ओ मरे ना जाया।

जम काल सदा है सिरे ऊपर, दूजे पाए पद खोई, बैले पेख पवे दिन राती, होमे रोग न जाई, पढ़ पढ़ लूजे बाद वखाने, मिल माया सुरत गवाई, सतगुर सेवे परम गद पावे, नाम मिले वडियाई, नानक नाम जिन्हां मन बसे।

लय उबार खिनमय भयान रूप निक्षा थम उपाड़ हरणागस नही बिदारिया प्रहलाद लिया उबार संत जना के हर जियो कार्ज सवारे प्रहलाद जन के एक ही कुल उधारे गुर के शब्द होमे बिखमारे नानक राम नाम संत निस्तारे।

थीत गोविंद जन्मासी परम भूले नर करत कचरायण जन्म मरण ते रहत नारायण रखाओ कर पंजीर खवायो चोर ओ जन्म न मरे रे साकत ढोर सगल पराद दे लो रोनी सो मुख जलो जित कह ठाकुर जोनी जन्म न मरे न आवे न जाए नानक का प्रभ रहो समाए भैरो महला पंजवा उठत सुखिया बैठ सुखिया पाओ नहीं लागे जा ऐसे बुझिया राखा एक हमारा स्वामी सगल पिठा का अंतर जामी रखाओ तोय अचिंता जाग अचिंता जहां कहां प्रा तू वरसंता कर सुख वस्या बार

अरहो अराम रसायन नित उड़ पीवो हार हार हार हार रसना कहो अरहाओ कल युग में एक नाम उधार नानक बोले ब्रह्म विचार भैरो महला पंजवा सतगुर सेव सर्व फल पाए जन्म जन्म की मैल मिटाए।

श्री धर्म हुन सगल उपावन निरंकार सुखदाता ऐसा प्रशोड करे अनसेवा तन बिखिया रस माता अरे मन मेरे तू गोविंद पाज आवर उपाव सगल मैं देखे जो चितविए तित बिगर सकाज रखाओ ठाकुर छोड़दासी को सिमरै मनमुख अंध अज्ञाना हर की भगत करे ते निंदै निगुरे पशु सुमाना जियो पिंड तान तान सब प्रभु का स्वागत कहते मेरा अंग बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर पव जल फेरा होम जग जाब तब सब संयम तड़ तीर्थ नहीं पाया मिटिया आप पे शरणाई गुरमुख नानक जब

बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहां मन ठहराना, ना बिना सब जग बौराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हो त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, ना बिना साध सड़गी चूरे।

हर घर जपना कहो नानक जो जन प्रापाए ताकी रेन बिरला को पाए भैरो महला पंजवा चितवत पाप न आलक आवे बेसवा भजत इस नह शरमावे सारो दिन समजूरी करे हर सिमन की वेला बजर सिर परे माया लग फूलो संसार आप भुलाया भुला मनहारे राच रहया बिरथा व्योहार रगाओ पेखत माया रंग बिहाए गड़बड़ करे कौडी रंग लाए अंध व्योहार बंद मन तावे करने हार ना जी मैं पावे करत करत भी दुख पाया पूर्ण होत न कार्ज माया काम क्रोध लोभ मन लीना तड़प मुआ जो जल बिन मीना जिसके राखे हुए हर आप हर हर नाम सदा जप जाप साध संग हर के गुण गाया नानक सतगुर पूरा पाया भैरो महला पंजवा अपनी दया करे सो पाए हर का नाम मन नमसाए साच शब्द हिरदे मन माहे जन्म जन्म के किल विख जाहे राम नाम जी को आधार गुर प्रसाद जपो निरपाई तार लय सागर संसार रहाओ जिन को लिखिया हर इहो निदान सेजन दरगे पावे मान सोग सहज आनंद गुण गाओ आगे मिले न तावे ताओ जुगे जुगंतर इहो तत्सार हर सिमरन साचा बीचार जिस लड़लाए लय सो लागे जन्म जन्म का सोया जागे तेरे भगत भगतन का आप अपनी महिमा आपे जाप जी जन सब तेरे हाथ नानक के प्रसद की साथ भैरो महला पंजवा नाम हमारे अंतर जामी नाम हमारे आवे कामी रोम रोम रवे।

मारे ने तिलतनी, नाम की महिमा सब में बनी। नाम हमारे पूरा साहो, नाम हमारे बेपरवाह हो, नाम हमारे भोजन पाओ, नाम हमारे मन का स्वाओ, नाम न विसरे संत प्रसाद, नाम लय अनहद पूरे नाद। प्रभु कृपा ते नाम नवनिध पाई, गुर कृपा ते नाम स्यों बने आई, तनवंते से ही प्रधान।

पूरे दृढ़ उहर नाम सबते उत्तम हर हर काम रखाओ। नाम हमारे मज्जन स्नान, नाम हमारे पूर्ण दान, नाम लयते सगल पवीत, नाम जपत मेरे भाई मीत, नाम हमारे सौ संजोग, नाम हमारे तृप्त सो भोग, नाम हमारे सगल आचार, नाम हमारे निर्मल व्यवहार, जाक मन वसिया प्रभ एक, सगल जना की हर हर टेक, मन तन नानक हर गुण गाओ, साध संग जे दे वेनाओ, भैरो महला पंजवा, निर्तन कहो तुम देवो तना, अनक पाव जाहे निर्मल मना, सगल मनोरथ पूर्ण काम, भगत अपने को देवो नाम, सफल सेवा गोपाल राय, करन करामनगार स्वामी।

परवासा सगल त्याव है प्रभु गुणतासा। जब जब अंध करे तेरे दासा सिमर नानक साचे गुणतासा। भैरो मोहला पंजवा परसम छोडी प्राई निंदा उतर गई सा मन की चिंदा। लो मोसव की नो दूर परम वैष्णो प्रापे खजूर। ऐसो त्यागी विरला कोए हर हर नाम जपे जन सोए रहाओ। अंग बुद्ध का छोड़या संग काम क्रोध का उतरिया रंग। नाम त्याए हर हर हरे सा जना के संग निस्तरे। बैरी मीत होए सम्मान सर्वमय पूर्ण भगवान। प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया। हर कृपा जिस राखे आप तोई भगत जपे नाम जाप। मन प्रगास

नृत्य नाट्य सुख नाही बहु देश कमाए सर्व सुखा हर हर गुण गाए सुख सहज आनंद लहो सा पागे वड़पागी गुरमुख हर हर नाम कहो रहाओ। बंधन माल पिता सुध बनता बंधन कर्म तरमो करता बंधन काटनहार मन वसै तौ सु पावे निज कर बसै सब जाजक प्रादे मनगार गुण निदान बेंत अपार जिसनु कर्म करे प्रव्यापना हर घर नाम तिने जन जपना गुर अपने आगे अरदास कर कृपा पुरख गुणतास कौ नांग तुमरी सरनाई ज्यों पावे त्यों रखो गुसाई। भैरो महला पंजवा गुरमुख त्यागो दूजा पाओ गुरमुख जप्यो हर का नाओ बिसरी चिंत नाम रंग लागा जन्म जन्म का सोया जागा कर कृपा अपनी सेवा लाए साधु संग सर्व सुख पाए हरहाओ। रोग दोख गुर शब्द निवारे नाम औखद मन पीतर सारे गुर पेड़त मन पया आनंद सर्वन दान नाम भगवंत जन्म मरण की मिटी जम त्रास साध संगत हूंद कवन विगास गुण गावत निचल विश्राम पूर्ण होए सगले काम दुर्लभ दे आई परवान सफल होई जप हर हर नाम कहो नानक प्रभु कृपा करी सास ग्रास जपो हर हरी। भैरो महला पनवा तब ते ऊंचा जा का नाओ सदा सदा ताके गुण गाओ जे सिमरत सगला दुख जाए सर्व सुख बसे मन आए सिमर मना तू साचा सोए हलत पलत तुमरी गत होए रहाओ। पुरख निरंजन सिरजनहार जी जंत देवे आहार कोट खते खिन बख्शनहार भगत पाए सदा निस्तार साचा तन साची वड्याई

निमखना छोड़े सदगी साथ हर सा प्रीतम अवर ना कोय सार समाले साचा सोए माल पिता सुत बंद नारायण आद जुगाद भगत गुण गायन।

सा संग मिटिया अब महान, ऐसे संत पेटे वड़पागी, नानक तिनके सद कुरबान। भैरो महला पंजवा, पंच मजमी जो पंच न राखे, मिथ्या रसना ने पुड़ पाखे।

ओए अंगम प्रिंग माया मैं खापे, माया ऐसी मोहनी पाई, जेते जीते ते डकाई, अरहाओ पंखी मृग माया मैं राते, साकर माखी

आए ऐसा ज्ञान विचार मना हर की ना सिमरो दुख पंजना अरहाओ जब लग सिंह रहे बन माहे तब लग बन फूले ही नाहे जब ही स्या

ज्ञान कबीर को जोर ना पहुँचे, कहाँ करो रगराया काम किवारी, दो सुख दरवानी पाप पुन दरवाजा, क्रोध प्रधान महा।

असंख कोट अन पूजा करी। एक न पूस नामे हरि परमे नाम दियो इहो करना। अंत रूप तेरे नारायण पर थान पर दारा पर हरी। ताके निट बसे नर हरि जो ना

परमत नाम दियो नाटे बिना ना सोहे बत्तीस लखना दूध कटोरे गडवे पानी कपल गाए नामे दुहे आनी दूध पियो गोबिंदे राय दूध पियो मेरो मन पतियाए नहीं ता कर को बाप रसाए अरहाओ सोयन कटोरी अमृत भरी लै नामे घर आगे तरी एक भगत मेरे हिरदे बसै नामे देख नारायण हस्ते दूध पियाए भगत कर गया नामे घर का दर्शन पै

भगत जना को देवरा फिरे, भैरों नाम देव जियो, कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद जैसी भूखे प्रीत अनाज, त्रिखाबंद जल सेती काज, जैसी

रेठानी दुट सवा मेल मंत्र उपाया करसे औध कनेरी गिर तार जाल ज्वाला पै राख्यो राजा राम माया फेरी काड खड़ग काल पै कोप्यो मोए बताओ जो तुहे राखे पीत पीतांबर तिरपावन तनी थंब माए हर पाखे हरण आगस जिन नखे बिधार्यो।

गोपाल गंग जमन जो उल्टी बह तो नामा घर करता रहे साल कड़ी जा बीती सुनी अजो न आयो तिर पवन तनी पाखंतन बाज बजायला गरड़ चढ़े गोविंद आयला आपने भगत पर की प्रतपाल गरड़ चढ़े आए गोपाल।

पूजा करे अंतर लोभ मन विखिया माहे। ओए निरंजन कैसे पाहे कीता हुआ करे क्या होए। जिसनु आप चलाए सोए नदर करे ता परम चुकाए। हुक्मे बूझे ता साचा पाए जे जीव अंतर मैला होए। तीर्थ पावे दिसंतर लोए नानक मिलिगे सतगुर संग। तो पवजल के तूड़ सबंध बसंत महला पहला सगल पवन तेरी माया मोह। मैं अवर न दिसे।

पावे, सदा शुभ शरीर पाणे चित लावे, अपना प्रसेवे सहज सुपाए, नानक नाम से मन आए, बसंत महला तीजा, माया मोह शब्द जलाए, मन तन हरिया सतगुर पाए, सफलो बिरख हर के द्वार, सची बाणी नाम प्यार, ए मन हरिया।

पद खोए साचा सेवो साची बाणी नानक नामे साच सुवाणी बसंत महला तीजा बिन करमा त परम भुलाई माया मोहे बहुत दुख पाई मन अंधे ठौर न पाई बिष्टा का कीड़ा बिष्टा माए सुमाई हुकम मने सो जन परवान गुर के शब्द नाम निशान अरहाओ साजर ते जिना तुर लिख पाया हर का नाम सदा मन पाया सतगुर की बाणी।

गुर सब्दी हर चेत सुभाए, राम नाम रस रहे अघाए, कोड़ कुटंत्र के पाप जल जाहे, जीव तुम्हारे हर नाम समाहे, हर की दात हर जीव जाने, गुर के शब्द एहो मन मोलिया, हर गुण दाता नाम खाने रहाओ, भगवे वेश प्रा मुक्त न होए, बहु संजम सांत न पावे कोए, गुरमत नाम प्राप्त होए, वडभागी हर पावे सोए, काल में राम नाम वडियाई, गुर पूरे ते पाया जाई, नाम रते सदा सुख पाई, बिन नामे होमे जल जाई।

मन घर सिमरो अंत सदा रख ले, हर घर चेत सदा मन मेरे, सब आलस दुख पंज प्रपाया, गुरमुख गावो गुण प्रकेरे रखाओ, मानव फिर होमे मोए, काल दै संघारे जमपुर गए, गुरमुख हर घर हर लिव लागे, जन्म मरण दो दुख पागे,

प्रतन कोठड़ी गढ़ मंदिर एक लुकानी सब गुरु मेरे ता खोजिए मेरे ज्योति ज्योत सुबानी माधो साधु जन देव मिलाए देखत दर्स पाप सब नस पवित्र परम पद पाए रघाओ पंच चोर मिल लागे नगरिया राम नाम तन हिरिया गुरमत खोज परे तप करे तन साबत रास उबरिया पाखंड परम उपाप कर थाके अंतर माया माया साधु पुरख पुरख पद पाया अज्ञान अंधेर गवाया जगन्नाथ जगदीश गुसाई कर कृपा साध मिलावे नानक सांत होवे मन अंतर नित हिरदे हर गुण गावे बसंत महला चौथा हिंडोल तो वड़ पुरख वड़ अगम गुसाई।

साधु संगत गुरे बताई ऊहां जपिए केवल नाम। साधु संगत पार ग्राम सगल तत् मैं तत् ज्ञान। सर्व ध्यान मैं एक ध्यान हर कीर्तन मैं उत्तम तुना। नानक गुरमिल गाए गुना बसंत महला पंजवा। जिस बोलत मुख पवित होए जिस सिमरत निर्मल गए सोए जिस

तेरा दिया सब जंत खाहे अंतरजामी प्रभ दयाल अपने दास को नदर निहाल कर कृपा मुझ देहो दान जब जीवे नानक तेरो नाम बसंत महला पंजवा आराम रंग सब गए पाप राम जबत कछ नहीं संताप गोविंद जबत सब मिटे अंधेर हार सिमरत कछ नाहे फेर बसंत हमारे राम रंग संत जना सो सदा संग रहाओ संत जने किया उपदेश जय गोविंद भगत सो तन देश हर भगत हीन उद्यान थान गुर प्रसाद कड़ कड़ पछान हर कीर्तन रस पूग रंग मन पाप करत तू सदा संग।

झूठ दूत सा प्रम थके बिन गुर साचे नहीं जाए। तुग देद संतर रहे ताए किरत ओ ना का मिटस नाहे।

तेरी सेवा तुझते होवे और न दूजा करता। भगत तेरा सोई तुद पावे जिसनु तू रंग धरता। तू वरदाता तू वरदाना और नहीं को दूजा। तू समर्थ स्वामी मेरा हाँ क्या जाना तेरी पूजा। तेरा मैल अगोचर मेरे प्यारे विघम तेरा है पाना। कहो नानक तय पया द्वारे रख ले वो मुगद अजाना। बसंत हिंडोल महला पंजवा मूल न बूझे आप न सूझे। परम व्यापी अहंग मनी पिता पार ब्रह्म प्राप्त हनी। मुए निस्तारो निर्गुणी रहाओ ओपत परलो प्रवते होवे। ए बिचारी हर जनी नाम प्रभु के जो रंग राते। काल में सुहिए से गनी आवर उपाओ न को सूझे। नानक तरिगे गुर बच

साधु इव तन मिथ्या जानो, या पीतर जो राम बस्त है साचो ताए पछानो रघाव। इव जाग है संपत सुपने की, देख कहां ऐडानो।

ना पणो थज दोत सवार प्रयो सेवो प्रभ प्रेम आधार गुर शब्दी बिगत्यास निवार मोहन मोह लिया मन मोहे गुर के शब्द पछाना तोहे नानक ठाडे चाह है प्रभु द्वार तेरे नाम संतोखे कृपा तार बसंत महला।

मन पूलो समझसो साच नाए, गुरु शब्द विचारे सहज पाए रखाओ। मन पूलो परमस पावर तार, बिल बिरथे चाहे बहु विकार, मैगल जो फासस कामहार, कड़बंधन बाध्य।

निर्मल नाव घर में घर जो देख दिखावे गुरमैली सो मैल बुलावे मन में मनुआ चित में चीता ऐसे घर के लोग अतीता हर सोगते रहे निराशा अमृत चाक हर नाम निवासा आप शान रहे लिवलागा जन्म जीत गुरमत दुख भागा।

लाज जिन जिन सेव्या अंत बार रे मन सेव तू परे पार तन्ने सेव्या बार बुद्ध तिरलोचन गुरमिल पई सिद्ध।

कब ही राजा का मंगन हार, दू सुख बांधो संसार, मन उदरण का साजन आहे, पाबंदन नित पौत जागे, ईठ मीत को सखा नाहे, आ बीज आपे ही खाहे, जाके तीने होत बेकार, ते छोड़ चलिया खिण मैं गवार, माया मुए मोह परम्या, किरतरे कर करम्या, करने हाँ।

मन पई उमंग घास चंदन चोआ बहु सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए सो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माहे जहां जाएगे तय जल पखान तू पूर रहे हो।

मेल सत संगत परम पद पाया आत्म राम रहया भरपूर रखाओ सतगुर संत मिले संत पाइये किल भग दुख काटे सब दूर आत्म जोत पई प्रफूलत पुरख निरंजन देखया हजूर वड़े भाग सतसंगत पाई हर घर नाम रहया भरपूर अड़सड़ तीर्थ मज्जन किया सतसंगत पग नहाए तूर दुरमत विकार मलीन मत होशी हिरदा कसुध लागा मोहकूर बिन कर्मा क्यों संगत पाईए होमे व्याप रहया मन चूर ओ दयाल कृपा कर हर जी मांगो सतसंगत पग तूर नानक संत मिले घर पाईए जन घर भेटिया राम हजूर सारंग महला चौथा गोविंद चरणन कौ बलिहारी भवजल जगत न जाई।

तित गृह वाजे पंच शब्द वड़पाग मथोरा तेन जन के सब पाप गए सब दुख गए सब रोग गए काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए तेन जन के हर मार कढे पंच चोरा हर राम बोलो हर साधु हर के जन साधु।

करत रहत निरहारी, तेन जन की सेवा थाए पई, जिनको किरपाल होवत बनवारी। हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले, जो पावत हर राम मुरारी। जिनका अंग करे मेरा स्वामी, तिनकी नानक घर पैज सवारी। सारग मोहल्ला चौथा पड़ताल, जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निधान। ससृढ़ का प्रभु मेरे मन हर बोल, हर पुरख अविनाशी रघाओ। हर का नाम अमृत हर हर हरे, सो पिए जिस राम प्यासी। हर आप दयाल दया कर मिले, जिस सदगुरु सो जन हर हर अमृत नाम चखासी। जो जन सेव है ससदा मेरा हर घरे, इनका सब दुख परम पौ जासी। जन नानक नाम लए ता जीव है, ज्यो चातक जल पीए तृप्तासी। सारग मल्ला चौथा जप मान श्री राम, राम रमत राम सत सत राम। बोलो भैया सद राम राम, राम रव रहा सरबगे रघाओ। राम आपे आप आपे सब करता, राम आपे आप आप सत जगे। जिस आप कृपा करे मेरा राम राम राम राए, सो जन राम नाम लिव लागे। राम नाम की उपमा देखो हर संतो, जो भक्त जिना की पत राखे। वेत कलयुग अगे जन नानक का अंग किया, मेरे राम राय दुश्मन दूख गए सब पगे। सारंग महला पंजवा चौपदे कर पहला, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। सदगुर मूर्त कौ बल जाओ, अंतर प्यास चातक जो जल की। सबल दर्शन कर पाओ रघाओ, अनाथा को नाथ सर्वप्रद पालक। भगत वशिल हर नाओ, जा को कोई ना रखे प्राणी। इस तू दे असराओ, नितरिया तर निगतिया गत। निथाविया तू थाओ, दस जाओ ता तू संगे। तेरी कीर्त कर्म कमाओ, एक स्ते लाख लाख।

सदगुर प्रसाद कैसे कहो मुए जी बेदनाई। दर्शन प्यास प्रेप्रीत मनोहर मान ना रहे बहुविद उमकाई रखाओ। चितवन चितवो प्रेप्रीत बैरागी तद पावो हर दर्शाई। जतन करो तो मन

तई पीरे को है रे संत मिलाई, जब तब संजम पुन सब होम अर्पो सब सुख जाई। एक निमुख प्रेदर्श दिखावे ते संतन कहे बल जाई, करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रहनाई। मान अपमान हो सगल त्यागो जो प्रे बात सुनाई, देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सदगुर पुरुख मिलाई। प्ररंग दयाल हुए गृह में पाया जन नानक तप्त बुझाई, सार्ग महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही। नरक कोर में उर्तव करता नेमक नेमक गुण गाही, अरहाओ आनक जन्म प्रमतो ही आयो मानस जन्म दुर्भाही। गर्भ जोन छोड़ जो निकसेओ तव लागो अनठाही, करे बुराई ठगाई दिन रैन निफल कर्म कमाही। कण नाही तो गान लागे ताए ताए दुख पाही, मित्या संग कूड़ लपटायो उर्ज परेओ कुसुमाही। तर मराए जा पकस बगरे तो काल मुखा उड़ जागी, सो मिलया जो प्रभु मिलाया जिस मस्तक लेख लिखाही। कहो नानक तिन जन बलिहारी जो अल्प रहे मन माही, सार्ग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई। जाके बिशरत होत मृत का गृह में रहन न पाई, रघाओ जी ही प्राण को दाता जाके संग सहाई। करो कृपा संतो मोए अपनी प्रा मंगल गुण गाई, चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैनो तूर बाशाई। जे प्रसाद मिल गए।

अपना प्रसिमरन वडभागी हर पाई रखाओ। भलो कबीर दास दासन को ऊतम सैन जन नाई, ऊच ते ऊच नाम दे समुंदर सी रविदास ठाकुर बने आई। जियो पिंड तन तन साधन का यो मन संतरे नाई, संत प्रताप परम सब नासे नानक मिले गुसाई। सारग महला पंजवां मनोरथ पूरे

साध समागम कोड़ बैकुंठे पाए रघाव दुलाब दे जब होत पुनीता जम की त्रास निवारे महापत्ते पादक उतरे हर नामा उर तारे जो जो सुने राम जस निर्मल ताका जन्म मरण दुख नासा कहो नानक पाई गे वडपागी मन तन हुए बेगासा सारग महला पंजवा दो पदे कर चौथा एक ओंकार सदगुर प्रसाद मोहन कर आवहो करो जुदरिया मान करो अभिमाने बोलो पूल चूक तेरी प्रेत्रिया रघाओ निकट सुनो अर पेखो नाही परम परम दुख परिया होए कृपाल गुर लाए पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमक जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिस लख बरिया साध संत की पीर जो पाई तो नानक हर संग मिरिया सारग महला पनवा अब क्या सोचो सोच बिसारी करना सास होई कर रहया दे नाओ बलिहारी रखाओ क्यों दिस फूल रही बिखिया बिख गुर मंत्र मूख गरड़ारी हा दे राख्यो करे अपना ज्यो जल कमला अलपारी हाओ ना ही किश मैं क्या हुसा तब तुम ही कल तारी नानक पाग प्रयोगर पाछे राग संत सदकारी सारग महला पंजवा आप मोहे सर्प पा बिरकाते करण कारण समरत स्वामी और एक स्ते मेरी गाते रघाओ देखे नाना रूप हो रंगा अन नाही तुम पाते दे आधार सर्व को ठाकुर जी प्राण सुख दाते प्रमतो प्रमतो हार जो परे हो तो गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया ए सुख बेगा नहीं राते सारग महला पंजवा अब मोहे लब दे है घर टेका गुर दयाल पय सुखदाई अंधले मानक देखा रखाओ काटे अज्ञान तेमर निर्मलिया बुद्ध विगास बबेका ज्यो जल तरंग फेन जल हुई है सेव ठाकुर पय एका जय ते उठ्यो तय ही आयो सभी एक एका नानक दृष्ट आयो सब ठाई प्राण पति घर समका सारग महला पंजवा मेरा मान एक ही प्रेमांग पेख आयो सब थान देश प्रे रोम न समसर लाग रहाओ मैं नीरे अनक भोजन बहु बिंजन पेसो दृष्ट न करे रुचांग हरस चाहे प्रे प्रेम खुटेर ज्यो आल कमला लोभांग गुण निधान मनमोहन लालन सुखदाई सरबंग गुरु नानक प्रापाए पठायो मिलो सखा गल लाग सारग महला पंजवा आप मोरो ठाकुर स्यो मन माना साध कृपाल दयाल पय है यो छेद्यो दुष्ट बिगाना रखाओ तुम ही सुंदर तुम्हे सियाने तुम ही सुगर सुजाना सगल जोर अर ज्ञान ध्यान एक निमकन कीमत जाना तुम ही नायक तुम्हे शत्रपात तुम पूर रहे भगवाना पावो दान संत सेवा हर नानक सब कुरबान।

ता भोजन मांगे अकाए सूख कनारे, ताब अरोग जब तुम संग बस्तो छुटक दुखोए रवारे, कवन बसेरो ता दासन को।

गुलाल लाडले सहज सहज गुण गायो रगाओ गुरबचनात कृपाल कृपा ते बौर नकत हूं तायो रेत उपाग समासु आसन भगत वशल ग्रे पायो नाल विनोद कोड आनंदा सहज सहज समायो करना आप करामन आपे कहो नानक आप आयो सारग महला पंजवा अमृत नाम मने आधारो जिन दिया तिसके कुर्बाने गुरपूरे नमस्कारो रगाओ बूझी तृष्णा सहज सुहेला काम क्रोध बिख जारो आए न जाए बसे जे ठार जे आसन रंकारो एके प्रगट एके गुप्ता एके तुंदुकारो आद मद अंत प्रसोई को नानक साज विचारो सारग महला पंजवा बेन प्रभ रहन न जाए करी सर्व सुख ताहू के पूर्ण जाके सुख हरी रगाओ मंगल रूप प्राण जीवन तान चिमृत अंध कना वड समर्थ सदा ससंगे गुण रसना कमल पना थान पवित्रा मान पवित्रा

अंधकूपमय पतत होत जग संतो करो परम गद मोरी साध संगत नानक पयो मुक्ता दर्शन पेखत पोरी।

निर्वैर संग वैर रचावे हर दरगे ओ हारे आद जुगात प्रभु की वडियाई जन की पैज सवारे निरपो पय सगल पो मिटिया चरण कमल आधारे गुर के बचन जप्यो नाओ नानक प्रगट पयो संसार सारग मुहला पंजवा हर जन छोड़िया सगला आप ज्यों जानो त्यों रखो गुसाई पेख जीवा प्रताप रखाओ गुर उपदेश साध की संगत बिन स्यो सगल संताप मित्र सत्तर पेग समत बिचार्यो सगल संपाखन जाप तरत बुझी शीतल आगाने सुन अनहद विषम पय विषमाद अंध पया नानक मन साचा पूर्ण पूरे नाद।

की करो नित सेवा, गुर अपना नमस्कारिया, सर्व फला दीने गुर पूरे, नानक गुर निस्तारिया, सारग महला पंजवां, सिमरत नाम प्राण गद पावे, मिटे कलेस त्रास सब नस, साध संग हित लावे रहाओ, हर घर मन आराधे, रसना हर जस गावे, तज अवमान काम क्रुद निंदा, बाज देव रंग लावे, दामोदर दयाल आराध हो,

रघाव जाके सूद परो ए जनता किस प्रभु का जस गाव हो सिमर ठाकुर जिन सब खज दीना आन कहां पे जाओ सबल सेवा स्वामी मेरे की मन बांझ।

दुख नाठे सुख सहज समाए, आनंद अंध गुण गाया, बां पगर कढ़ लीने अपने, गृह अंध कूबते माया, कहो नानक गुर बंधन काटे, विश

पांच दोख शिद्र या तर्म है बिखे ब्याध की करनी आस अपार दिनस गण राखे ग्रस्त जात बल जरनी अनाथे नाथ दयाल सुख सागर सर्व दुख पय फरनी मन बांचित चितवत नानक दास।

समझ अचेत चेत मन मेरे कथी संतन अकथ कहानी लाभ लहो हर दे आराधो छुटके आमन जानी उदम

छोड़ो कपट होए निर्वैरा, तो प्रसंग निहारे सतन वंजो सतनक संचो कबू न आवो हारे। खात खर्चत किश निखुटत नाही, अगन

मन तन धन तब तुमरा स्वामी आन न दूजी जाए। जो तू रखे तिवखी रहना तुमरा पहने खाए, साध संगत के बल बल जाई

पूर्ण होत न कतहु बाते, अंत पर तिहार रगाओ, सांत सुख न सहज उपजे। ये इस व्यवहार आप पर का कछ न जाने, काम क्रोध है जार, संसार सागर दुख व्यापे हो।

दर्शन पेख मेरा मन मोयो, दुर्मत जात बही रघाओ, अगे अगाद ऊच अबनासी, कीमत जात ना कही। जल तल पेख पेख मन बिकस्यो, पूर रहो सर्व मही, दीन दयाल प्रीतम मन मोहन, मेरे साधे कीनो सही। सेमर सेमर जीवत हर नानक, जम की पीर ना फही, सारग महला पनवा माई री, मन मेरो मतवारो। पेख दयाल अंध सुख पूरन, हर रस रप्यो खुमारो रघाओ, निर्मल पै उजल जस गावत, बौर न होवत कारो। चरण कम से डोरी राची, भेट्यो पुरख अपारो, कर गए लीने सर्बस दीने, दीपक पयो उजारो। नानक नाम रसक बैरागी, उले समूहा तारो, तारक महला पंजवा मायरी, आन सिमर मर जाहे। त्या गोविंद जीन को दाता, माया संग लपटाहे रघाओ, नाम सार चले अनमार्ग, नरक कोर में पाहे। अनक सजाई गणतन आवे, गर्भ गर्भ परमाहे, से तनवंते से पतवंते,

काम क्रोध निंदा पर हरिय काढ़े साधु के संगमार। जन्म पदार्थ गुरमुख जीतया बौर न जुए हार। आठ पैर प्रभु के गुण गावे पूर्ण शब्द विचार। नानक दासन दाजन तेरा उन्हें

गोविंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञान रघाव साधक सिद्ध सगल मुन लोचे बिरले लागे ध्यान जिसे कृपाल होए मेरा स्वामी पूर्णता को काम जा के हृदय वस्ते पए भंजन ते जा

आनंद मंगल गाओ हर जस पूर्ण प्रट्यो नेह हो रहाओ। प्यार कुंट दह दिस जल निध ऊन थाओ ना के हो, कृपा निध गोविंद पूर्ण जी दान सब देहो। सत सत हर सत स्वामी

आईरी देख रही बिस्माद अनहत तुनी मेरा मन मोयो अचरजता के स्वाद रखाओ। माद पिता बंद पगे सोई मन हर को अहलाद साध संग गाए गुण गोविंद बिनस्यो सब प्रमाद डोरी लपत रही चरणे संग परम पै सगले खाद। एक आधार नानक जन किया बौर न जोन प्रमाद सार्ग महला पंजवा मायरी माती चरण समूह एक बिन हो आन न जानो द्वितीया पाओ सब लुह रहाओ। त्या गोपाल अवर जो करना ते बिखिया के खूह दर्स प्यास मेरा मन मोयो काढ़ी नरक ते तूह संत प्रसाद मिलो सुखदाता मिर्सी हो में हू। आराम रंग राते दास नानक मौल्यो मन तन जूह सार्ग महला पंजवा बिन से काद के व्योहार आराम पज मिल साध संगत हे जग में सार रगाओ। ईत पूत ना डोल कतहु नाम गिर दे तार गुर चरण भोज मिलो भागी उतरे संसार जल थल मैयल पूर रहे हो।

मोह मद मातो सिमरत ना गए हरे रगाओ साध संग जपते नारायण तिनके दुख जरे सबल दे तन ओए जन्मे प्रभ के संग रले चार पदार्थ अष्ट दिशा सिद्ध

तू बेअंत पार ब्रह्म स्वामी पर तेरी जाए न लाखी। चरण कमल प्रीत मन बेदया कर सर्वस अंतर राखी। वेद पुराण सिमरत साधु जान।

मोहेली प्रे प्रीत हृदय मेल सरबरी प्रीत दयार प्रसदारी दयार काए आन आन रुचिये हर संग संग खचिये जो साध संग पाए कौ नानक हर त्याय अब रहे जमे मेल सारग महला पंजवा कंचना बो दत करा होम दान अर्प तरा मन अर्क सोच पवित्र करत ना हीरे नाम तुल मन चरण कमल लागे रघाओ चार वेद जेब पने दस अष्ट खष्ट श्रवण सुने नहीं तुल गोविंद नाम तुने मन चरण कमल लागे परत संद सोच चार किरिया कुंट निराहार।

नैन पेखो जिन नानक नाम इष्ट लागे। सारग महला पंजवा राम राम आराम जाप रमत राम सहाई रहाओ। संतन के चरण लागे काम क्रोध लोभ ते आगे। गुर गोपाल पय किरपाल लभदे अपनी पाई। बिरसे प्रम्हो अंध टूटे माया के बंद। पूर्ण सर्वत्र ठाकुर ने को बैराई। स्वामी सो प्रसन्न पय जन्म मरण दुख गए। संतन के चरण लाग नानक गुण गाई। सारग महला पंजवा हर हरे हर मुखो बोल। हर हरे मन धारे रहाओ। श्रवण सुनन भगत करन अनक पातक पुने चरण। सरन परन साधु

आधार नानक आप सदीव है। पूरा जिस भंडार वड्डा कर सालाही है, अंत न पारावार पौड़ी। हर का नाम निधान है, सेवे सुख पाई, नाम निरंजन उच्चरा पद स्यों कर जाई। गुरमुख बाणी नाम है, नाम हृदय वसाई, मत पंखे रूवस होए।

काम क्रोध तृष्णा उचर दसवीं दसे द्वार जे ठक एकासी एक कर जाने द्वादशी पंच वसगत का रख तो नानक मन माने

कर कर हेत पधाए दे पर दर्व चुराया पुत्र कलत्तर ना विस है बहु प्रीत लगाया वेख दिया गई माया तोए गई पछते पछताया।

एकले लागी ग्रे कुटम में सहज समाधि नानक नाम रते से सच्चे बैरागी महला चौथा गणते सेव न होवई कीता थाए न पाए सबदे साधन आयो सच न लगो पाओ सतगुर प्यारा न लगई मन आवे जाए जे एक विख अगाहां।

अद पारी। मूर्ख अंधे त्रै गुण सेव माया कै ब्योहारी। अंदर कपट उदर परण कै ताई। पाठ पड़े गावारी सतगुर सेवे सो सुख पाए। जिन होमे विचो मारी नानक पढ़ना गुणना एक नाओ है।

लोभ लहर सुध मत गई, सच न लगे प्यार। गुरमुख जिना शब्द मन वसे, दर गए मोह द्वार। नानक आपे मेल लय, आपे बख्शन हार। महला चौथा, नानक जिस बिन कड़ी ना जीवना, विसरे सरय ना बिंद। तेस ज्यों क्यों मन रूसी है, जिस हमारी चिंद। महला चौथा, सावन आया चिमचिमा, हर गुरमुख नाम ते आए। दुख पुख काड़ा सब चुकाए सी, मीहो मुठा शह बरलाए। सब तरत पई हरियावली, आन जम्या बोहल लाए। हर अचिंत बुलावे कृपा कर, हर आपे पावे ताए। हर से ते आवो संत जनो, जो अंते लए छिड़ाए। हर कीर्त भगत आनंद है, सदा सुख वसे मन आए। जिन्ना गुरमुख नाम आराध्या, तिना दुख भुख ले जाए।

कहां नार गर्भस थोरी बात, मंद नाज टका चार गांठी, आइडो टेडो जात गाओ, बहुत प्रताप गांव सो पाए, दो लख टका बरात, दिस चार की करो साहिबी, जैसे बनघर पात, ना को ले आयो यो तन, ना को ले जात, रावण हूं ते अलक शत्र पा, हर के संत सदा सिर पूजो, जो हर नाम जपात, जिन को कृपा करत है गोविंद, ते सत्संग मिलात, मात पिता बंता सुत संपत, अंत न चलत संगात, कहत कबीर आराम पज बौरे।

माया कारण श्रम अत करै, सो माया ले गाडे तरे, आत संचय समझे नहीं मूड, तान तरती तन हो गयो तूड़, काम क्रोध तृष्णा अत जरे, साध संगत कबहू नहीं करे, कहत नाम जो ताची आन, निरपय होए पजिए भगवान, बदो की ना होड़ माधो मोस्यों, ठाकुर ते जान, जानते ठाकुर, खेल परयो है तो स्यों रहाओ, आपन देव देवरा आपन, आप लगावे पूजा, जल ते त्रंग, त्रंग ते है जाल, कहेन सुन को दूजा, आपे गावे आपे नाचे, आप बजावे तूरा, कहत नाम देव तू मेरो ठाकुर, जन ऊरा तू पूरा, दास अनिम मेरो निज रूप, दर्शन निमख तात्री मोचन, परसत मुक्त करत ग्रे कूप रहाओ, मेरी बंदी भगत छिड़ावे, बंदे भगत न छूटे मोहे, एक समय मोको गए बंदे, तौ फुन मैं पो जवाब न होए, मैं गुण बंद सगल की जीवन, मेरी जीवन मेरे दास, नाम देव जाके जी ऐसी, तैसो ताके प्रेम परगास, सारंग एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, तय नर क्या पुराण सुन कीना, आन पावनी भगत नहीं उपजी, भूखे दान ना दीना रहाओ, कामना बिसरयो, क्रोध ना बिसरयो।

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहपंग गुरप्रसाद खाना पीना हसना सौना विसर गया गए मरना खसम विसार खुवारी कीनी त्रिग जीवन नहीं रह।

जियां अंदर जियो तुही, गुरमुख त्यावे से अमृत पावे, सेई सूचे होही। आहिरस नाम जपोरे प्राणी, मैले हच्छे होही, जेही रुत काया सुख तेह, तेहो जेही देही। नानक रुत सुहावी साई, बिन नावे रुत केही। मलार महला पहला, करो

आवे। बरस कना मेरा मन पीना, अमृत बूंद सुहानी ही अरे। गुरमोही मन गरस लीना रहाओ, सह सुखी वर कामन प्यारी। जिस गुरबचनी मन मान्या, हर वार नार पही सोहागन। मन तन प्रेम सुखानिया, अवगुण त्याग पही बैरागन। अस्थिर वर सुहाग हरी, सोग विजोत कदे न व्यापै। हर प्रभ अपनी कृपा करी, आमन जान नहीं मन निचल। पूरे गुर की ओट गही, नानक राम नाम जप गुरमुख। तन सुहागन।

गुण माया जिन जगत भुलाया, जन्म मरण का सहसा गुर प्रसादी एको जाने, चूके मनो अंदेसा हम दीन मूल।

प्राप नारायण सोई। गुर प्रसाद परम पद पाया वड्डी वड्याई होई। अन दिन गुण गावे नित साचे सच समावे सोई। मान रे

माया मोह अज्ञान गुबार, मन मुख मोहे मुग्ध गवार, आनदन कंदा करत विहाए, मर मर जम्मे मिले सजाए, गुरमुख आराम नाम लिवलाई, कूड़े लालच ना लबटाई, जो किश होवे सहज सुपाए, हर्ष पीवे रसन रसाए।

न पाए, यो विछोड़ा सहया ना जाए। सतगुर मिले ता मिले सो पाए, नामहीन बिन से दुख पाए। तृष्णा जलिया भूख न जाए, बिन भागा नाम न पाया जाए। बहुबद थाका कर्म कमाए, त्रै गुण बाणी वेद विचार। बिख्या मैर बिख्या वापार, मार जन्मे फिर होए खुवार। गुरमुख तुरिया गुण उरतार, गुर माने माने सब कोए। गुर बचनी मन सीतल होए, जो जुग सोभा निर्मल।

परे हमरे विच हमरी मैल साधु की तूर गवाई तीर्थ 68 मज्जन नाई सत संगत की तूर परी उड़ने तरी तब दुर्म

जन के हम हाट बिहाजे जिस हर घर कृपा करे हर जन को मिलिया सुख पाइये सब दुरमत मैल हरे हर जन को घर भूख लगानी जन तृपे जा हर गुण बिचरे हर का जान हर जल का मीना हर बिसरत फूट मरे जिन ए प्रीत लाई सो जाने कह जाने जिस मन तरे जन नानक हर देख सुख पावे सब तन की भूख टरे मलार महला चौथा जितने जी जंत प्रभ कीने इतने सिर तार लिखावे हर जन को हर दीन वडाई हर जन हर कार लावे सतगुर हर घर नाम दिरड़ावे हर बोलो गुर के सिख मेरे पाई हर फौजल जगत तरावे रघाओ जो गुर को जन पूजे सेवे सो जन मेरे घर प्रापावे हर की सेवा सतगुर पूजो कर कृपा आप तरावे परम फूले अज्ञानी अंधले प्रम प्रम फूल तोरावे निर्जु पूजे मड़ा सरेव है सा बिरती काल गवावे ब्रह्म बिंदे सो सतगुर कहिए हर घर कथा सुनावे तिस गुर को शादन पूजन पाठ पटंबर बहु विद सदकर मुख संचो तिस पुन की फिर टूट न आवे सतगुर दियो प्रतख हर मूर्त जो अमृत भजन सुनावे नानक पाग पले तिस जन के जो हर चरणी चित लावे मलार महला चौथा जिनके हीरे बस्यो मेरा सतगुर ते संत पले पल पांत तिन देखे मेरा मन विसे औ तिनके सदबल जात ज्ञानी हर बोलो दिन रात तिनकी तृष्णा पूग सब उतरी जो गुरमत राम रस खांत रखाओ हर की दास साध सगा जा।

होता बिन खीरे रहन न जाई। सार संभाल माता मुख नीरे ताको त्रिप्त अगाई। हम बारक पिता प्रवदाता फूले बारक अनक लख बरिया। अनठौर नाही जय जाता रघाओ चंचल मत बारक बपरे की। सर्प अगन कर मिले माता पिता कंठ लाए रखे। आनंद सहज तब खिले जिसका पिता तू है मेरे स्वामी। तिस बारक भूख कैसी नाम निधान गृह तेरे मन बांछे सो लैसी।

राजा राम रमत सुख पायो, बरस मेघ सुखदाई रखाओ। एक पाल बिसरत नहीं सुख सागर, नाम नवे निद पाई। उदाउद पयो पूर्ण भावी को, पेटे संत सखाई। सुख उपजे दुख सगल बिनासे, पार ब्रह्म लिवलाई। तरयो संसार कठिन पै सागर, हर नानक चरण।

आनंद मंगल सुख पाया रखाओ मिटे कलेस त्रिसन सा बूझी पार ब्रह्मन त्याया साध संग जन्म मरण मारे बौर न कतहु ताया मन तन नाम निरंजन रातो चरण कमल लिवलाया अंगीकार कियो प्रभ अपने नानक दास शरणाया मलार मोहल्ला पंजवा विशरत क्यों जीवे ओए जीवन चित्ते उलास आस मिल।

मन मोयो हर पंख लगाए मलीजै रहाओ खोजत खोजत मार्ग पायो साधु सेव करी जय तार अनुग्रह स्वामी मेरे नाम महारस।

चित आवे, आठ पैर तेरे रंग राते रहाओ, गावन सुनन सब तेरा पाना, हुकम बूझे सो साच समाना, जप जप जीवे तेरा नाओ, तुझ बिन दूजा नाही थाओ, दोसो करते हो मर जाए, पाने बगस पाने देस जाए, दुआ सिरियां का करता आप, कुर्बान जाई तेरे प्रताप, तेरी कीमत तू है जाने, तू आपे बूझे सुने आप वखाने, सेई भगत जो तुद पाने, नानक तिनके सद कुर्बाने, मलार महला पंजवां, परमेश्वर हुआ दयाल, मेघ वर्षे अमृत

पंजवां पड़ताल कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर मनार प्रे दयार स्यो रंग किया।

बाजे बजे मृदंग अनाद कोकलरी आराम नाम बोले मदर बैन अत सोईया ऐसी तेरे दर्शन की शोभ अत अपार प्रे अमोग तैसे ही संग संत बने पाव उतार नाम पने राम राम राम माल मन फेरते हर संग संगिया।

होए आनंद सगल भाग रहाओ। संत संगे मन परफड़े मिल मेघ तर सुहाग। कान कोर प्रीत मोर चित चात्रक बूंद ओर। ऐसो हर संगे मन मोह त्याग माया तोहो।

मन माही। गारड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी, बिखिया गुरमत जारी। मन तन हेम पे सज पाया, हर की भगत निरारी। जेती है तेती तुद जाचे, तू सर्ब जिया दयाला। तुमरी सरण परे पद राखो, साच मिले गोपाला। बादी तंद अंध नहीं सूझे, बदक कर्म कमावे। सदगुर मिले ता सूझस बूझस, सच मन ज्ञान समावे। निर्गुण दे

प्यारे बिन एक न रह ना सको, बिन मिले नींद ना पाई, पेर नजीक ना बूझे बपड़ी, सदगुर दिया दिखाई। सहज मिलिया तब ही सुख पाया, तृष्णा शब्द बुझाई। कहो नानक तुझते मन मानिया, कीमत कहन ना जाई। मलार महला पहला, अष्टपदिया कार दूजा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। अखली ऊंडी जल परनाल, डूगर ऊचो गड़पाताल, सागर शीतल गुरशब्द विचार, मार्ग मुक्ता हो मैं मार। मैं अंधले नावे की जोत, नाम आधार चला गुर कै पै भेत रहाओ। सदगुर शब्दी पद्र जाण,

मन रे सतगुर सेव समाए, वड़े पा गुर पूरा पाया, हर हर नाम त्याए रहाओ, हर अपने पाने सृष्ट उपाई, हर आपे दे आधार, हर अपने पाने मन निर्मल किया, हर स्यों लागा प्यार, हर के पाने सतगुर पेटिया, सब जन्म सवारन हार, वाहो बाणी सत है गुरमुख बूझे कोए, वाह वाह कर प्रसाल आई है तेस जेवड़ अवर न कोए, आपे बगसे मेल लय कर्म प्राप्त होए, साचा साहेब मारो सतगुर दिया दिखाए, अमृत वरसै मन संतोखिए सच रहे लिवलाए, हर के नाए सदा हरियावली फिर सुके ना कुमलाए, बिन सतगुर किने ना पायो मन वेखो को पतियाए, हर कृपा ते सतगुर पाइए भेटे सहज सुपाए, मानमुख परम भुलाया बिन पागा हर तन ना पाए, त्रै गुण सभा तात है पढ़ पढ़ करे विचार, मुक्त कदे ना होवई न पाएन मोह द्वार, बिन सतगुर बंधन ना टुट ही नाम न लगे प्यार, पढ़ पढ़ पंडित मुनी थके वेदा का अभ्यास, हर नाम चेतना आवई न निज कर होवै वास, जमकाल सिरो न उतरै अंतर कपट विनाश, हर नावे नू सब को प्रताप दा विण भागा पाया ना जाए, नदर करे गुर पेटिए हर नाम से मन आए, नानक नामे ही पत उपजे हर सोरहा समाए, मलार महला तीजा अष्टपदी

पूजा लाया, दस अवतारी राम राजा आया, दैता मारे ताए हुक्म सवाया, ईस महेश्वर सेव इनी अंत ना पाया, सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया, दुनिया तंदे लाए आप छपाया, धर्म कराए कर्म तुरों फरमाया, श्लोक महला दूजा सावन आया हे सखी।

अकल मन गोर न मानी, मन कमीन कम तरीन, तू दरिया ओ खुदाया। एक चीज मुझे देहे आवर जहर चीज ना पाया, पुराब खाम कूजे हिकमत खुदाया। मन तुआना तू कुदरती आया, सग नानक दी बान मस्ताना निध चढ़े सवाया।

प्रतहार तो ऐसा राजा श्री गोपाल जांचे कार गान गंधर्व रिखी बपड़े टाडिया गावंत आछे।

कल युग मैं पाया जिन नाव कानड़ा मोहल्ला पंजवां कीर्त प्रभु की गाओ मेरी रसना अनक बार कर बंदन संतन ऊहां चरण गोविंद जी के बसना रहाओ अनक पान कर द्वार न पावो होए किरपाल ता हर हर त्यावो कोड़ कर्म कर दे न सोदा सात संगत मैं मन पर बोधा तृष्ण ना बूझी बहु रंग माया नाम लैत सर्व सुख पाया पार ब्रह्म जप पए दयाल कहो नानक तो छूटे जंजाल कानड़ा मोहल्ला पंजवां ऐसी मांग गोबिंद ते तैर संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गते रखाओ पूजा चरना ठाकुर सरना तोई कुसल जो प्रभु जी उपरना सबर होते दुर्लभ देही जा को सदगुर मया करेही अज्ञान परम बिन से दुख डेरा जा के हृदय बसे गुर

घर पायो सिर डार्यो नानक संत चरना कानड़ा मोहल्ला पंजवां साध सरन चरण चित लाया सुबन की बात सुनी पेखी सुपना नाम मंत्र सदगुरु दृढ़ाया रहाओ नेत्रतानो राज जोबन तान बहोर बहोर फिर ताया सुख पाया तृष्णा सा बुझी है सांत पाई गुण गाया बिन बूझे पशु की न्याई परम होए बेआ प्यो माया साध संग जम जेवरी काटी नानक सहज समाया कानड़ा मोहल्ला पंजवां हर के चरण हृदय गाए शीतला सुख सांत मूर्त सिमर सिमर नित त्याए रहाओ सगल आस होत पूरन कोड़ जन्म दुख जाए पुन दान अनेक क्रिया साधु संग समाए

आवत जात रहे श्रम नासे सिमरत साधु संग पतत पुनीत होए खिन पीतर पार ब्रह्म कै रंग।

पूर्ण होवे आस। तानड़ा मोहल्ला पंजवा, साध संगत निधर को नाम, संग सहाई जी के काम रखाओ, संतरेन नित मज्जन करे, जन्म जन्म के किल बिख हरे, संत जना की ऊंची बानी, सिमर सिमर तरे नानक प्राणी। कानड़ा मोहल्ला पंजवा, साधु हर हरे गुण गाए, मान तन तन प्राण प्रभ के, सिमरत दुख जाए रखाओ। ई पूत कहां लोभ आवे, एक सियो मन लाए, मां पवित्र संत आसन, मिल संग गोविंद त्याय, सगल त्याग शरण आयो, नानक लेहु मिलाए। कानड़ा मोहल्ला पंजवा, पेख पेग बिसाओ साजन, प्रभ अपना एकांत रखाओ। आन दा सुख सहज मूर्त, तिस आन नाही भांत, सिमरत एक बार हर हर, मिट कोट कसमल जांत, गुण रवंत दुख नस है, रिद पय अंत सांत। अमृतारस पीओ रसना, नानक हर अंग रात। कानड़ा मोहल्ला पंजवा, साजना संत आओ मेरे रहाओ, आनदा गुण गाए मंगल, कसमला मिट जाए परेर, संत चरण तरो माथ, चांदना गृह हुए अंधेर, संत प्रसाद कमल बिकस, गोविंद भजो पेख नेर, प्रभु कृपा ते संत पाए, वार वार नानक ओ बेर। कानड़ा मोहल्ला पंजवा,

आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम ते आवन, नाम हमारे प्राण आधार है। हरहाओ नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवार है। हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल विखम नाम हर तार है। अगम पदार्थ लाल अमोला।

अवर ओट में कोई न सूझे, एक हर की ओट में आस, क्या दीन करे अरदास, जो सब कड़ प्रभु निवास, प्रभ चरणन की मन प्यास, जन नानक दास कहित है तुमरा, हौ बल बल सद बल जास, कानड़ा मोहल्ला पंजवा कर छेवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, जगत उदाहरण नाम प्रे तेरे, नाम निध नाम निदान हर केरे, हर रंग रंग रंग अनुपेरे।

संतना हर संतना हर संतना की रेन कियो अर्प देन प्रभ पय है किरपेन मान वो त्याग छोड़ो।

गए सदगुर, मैं सदगुर शरण मिलावे गो। कानड़ा मोहल्ला चौथा, मान गुरमत चाल चलावे गो। जो मैगल मस्त दीजे तर कुंडे, गुर अंकस।

हर प्रसज्जन नाम हर मैं मनतन नाम शरीर सब ऐसा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन हर तीर पौड़ी हर उत्तम हरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जपदे हर हर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार समाले सब जी जंत हर वसे निट सब जौला सो बूझे जिस आ बुझाए सी जिस सदगुर पुरख प्रसौला सब गावो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समोला सलोक महला चौथा सुत्या हर प्रवचेत मान हर सहज समा समाए जन नानक हर हर चाओ मान गुर तुठा मेले माए महला चौथा हर इकस स्थिति पिरहड़ी हर इको मेरे चित जन नानक एक आधार हर प्रभ एक सते गत पत पौड़ी पंचे शब्द वजे मत गुरमत वडभागी अनहद वजया आनंद मूल राम सब देखया गुर शब्दी गोविंद गजया आद जुगाद वेस हर एको मत गुरमत हर प्रभ भजया हर देव हो दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लजया सब धन कहो गुर सदगुरु गुर सदगुरु जित मिलघर पड़दा कजया सलोक महला चौथा भगत सरोवर उछल सुबर परे वहन जिन्ना सदगुर मनिया जन नानक वडभाग लहन महला चौथा हर हर नाम असंख हर हर के गुण कथन ना जाहे हर हर अगम अगाध हर जान केत विद मिले मिलाहे हर हर जस जपत जपंत जान एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लहो लड़लाए पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर हुए सो वर्णिए तिस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सदगुर चढ़ साल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सदगुरु जित मिल हर लेखा लिखा सलोक महला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिगे सदगुर पाए हर हर नाम पवित है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिनी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगे जन पै नाइयन जिन हर मन वस्या आए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन पाए महला चौथा हर हर नाम निधान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया दिन

एक मनमुख कर हारायण, एक ना मेल गुरु तिन जीता, तारूत मगर प्रभ नाम है, गुर भजन सुभागे लीता, दुख दाल दिल सबो लह गया, जा नाव गुरु हर दीता, सब सेवो मोहनो, मन मोहनो, जग मोहनो, जिन जगत्यो पाए सबो वस कीता, श्लोक महला चौथा, मन अंतर हो में रोग है, ब्रह्म फूले मनमुख दुर्जना, नानक रोग वन्याय, मिल सदगुर साधु सज्जना, महला चौथा, मन तन ताम सगारवा, जा देखा हर नैने, नानक सो प्रामय मिले, हो जीवा साध सुने पौड़ी, जगन्नाथ जगदीशर करते, अपरंपर पुरख अतोल, हर नाम ते आवो मेरे गुरसिखो, हारूतम हर नाम अमोल, जिन त्याया हिरदे दिन सरात, ते मिले नहीं हर रोल, वडभागी संगत मिले,

गोपाल गुण प्रगट सब लोई। सलोक महला चौथा। गुरमुख मिले से सजना हर प्रपाया रंग, जन नानक नाम सलाहे तू, लुड़ लुड़ दर गए।

को सुने को उचर सुनावे, जन्म जन्म की मल उतर है, मन चिंदिया पावे, आवन जाना मिटिए, हर के गुण गावे, आप तरह संगी तराहे।

सदगुर प्रसाद तेरे मान हर घर मान नैन बैन श्रवण सुनिए अंग अंगे सुख प्राण रहाओ इत उत दह दिस रव्यो मेर तिन्हें सुमान जद कता तद पेखिए हर पुरख पत प्रधान साध संग भ्रम पै मिटे कथे नानक ब्रह्म ज्ञान कल्याण मोहल्ला पंजवां गुरनाद तुन आनंद वेद कथत सुनत मुंजना मिल संत मंडली रहाओ ज्ञान ध्यान मान दान मन रसक रसन नाम जपत ते पाप खंडली जोग जुगत ज्ञान पुत सुरत शब्द तत् बेते जब तब अखंडली ओत पोत मिल जोत नान कशु दुख ना डंडली कल्याण मोहल्ला पंजवां कौन बे ताकी कहां करो हरत ध्यान ज्ञान सहस्त्र गया अजर पद कैसे जरो रखाओ बेसन महेश सिद्ध मुन इंद्रा कैदर शरण परो काहू पै राज काहू पै सुरगा कोड़ मध्य मुक्त कहो कहो नानक नाम रस पाईए साधु चरण गहो कल्याण मोहल्ला पंजवां प्राण पद दयाल पुरख प्राप्त सके गर्भ जोन कल काल जाल

रामो राम रवीजै, साधु साध साधन नीके, विल साधु हरं की जय रघाओ। जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करीजै, कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थमन को।

साधु साध साध मन प्रीतम बिन देखे रहे ना सकीजै। ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है, खेन जल बिन फूट मरीजै। महा अपाग अपाग है जिनके, जिन साधु तूर न पीजै। तिना तिसना जलत जलत नहीं बूझै, दंड तरमरा एका दीजै। सब तीर्थ वर्त जग पुन

रामा राम राम पूज करीजे, मन तन अर्प तरो सब आगे, रस गुरमत ज्ञान दरड़ीजे रखाव, ब्रह्म नाम गुण साग तरोव, नेत चुन चुन पूज करीजे, आत्म दियो दियो है आत्म, रस लागे पूज करीजे, विवेक बुद्ध सब जग में निर्मल, विचर विचर रस पीजे, गुर प्रसाद पदार्थ पाया, सदगुर को यो मन दीजे, निर्मोल अत हीरो नीको, हीरे हीर विधीजे, मन मोती साल है गुर सब दी।

के कर्म नाही धर्म नाही नाही सुचमाला शिव जोत कन्नो बुद्ध पाई सदगुरु रखवाला जाके बरत नाही नेम नाही नाही बकबाई गात अवद की चिंत नाही सदगुरु फरमाई जाके आस नाही निराश नाही चित सुरत समझाई तंत कौ परम तंत मिलिया नानका बुद्ध पाई प्रभाती महला पहला ताका कहिया दर प्रवान बिख अमृत दुष सम कर जान क्या कहिए सर्वे रहया समाए।

लेव उर्मन नाम लगान, अमृत रस पिया गुर सबदी, हम नाम मिटो कुर्बान, हमरे जग जीवन हर प्राण, हर उत्तम अंतर पायो, गुरमंत दियो हर कान रखाओ, आभो संत मेरो मेरे पाई, मिल हर हर नाम वखान, कित विद क्यों पाइये प्रभ अपना, मोको करो उपदेश हर दान, सत संगत में हर हर वसया, मिल संगत हर गुण जान, वडे भाग सत संगत पाई, गुर सदगुर परस भगवान, गुण गावे प्रभ अगम ठाकुर के, गुण गाए रहे हैरान, जन नानक गौ गुर कृपा धारी, हर नाम दियो खिनदान, प्रभाती महला चौथा, उगवे सूर गुरमुख हर बोल, सवरैन संभाले हर गाल, हमरे प्रभ हम लोच लगाई।

गुण गावत मन होए आनंद, आठ पैर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कर मल जाहे, सिद्ध गुर की हम चरणी पाहे, सुमत देव हो संत प्यारे, सिमरो नाम मोहे निस्तारे रखाओ, जिन गुर कहया मार्ग सीधा, सगल त्याग नाम हर गीदा, तिस गुर कै सदा बल जाइए, हार सिमरन जि गुर ते पाईए, बूढ़ प्राणी जिन गुरे तराया, जिस प्रसाद मोहे नी माया, हलत पलत जिन गुरे सवारिया।

भगत हर सो मन माना। सुन सज्जन संत मीत सुहेले, नाम रतन हर अगे अतोले। सदा सदा प्रगुणित गाई है, कहो नानक वडभागी पाई है। प्रभाती महला पंजवा, चेतनवंत सेई सच साहा। हर की दरगहे नाम साहा, हर हर नाम जपो मन मीत। गुरपूरा पाईगे वडभागी, निर्मल पूर्ण रीत। रखाओ पाया लाभ वजी वाधाई, संत प्रसाद हर के गुण गाई। सफल जन्म जीवन प्रवान, गुर प्रसादी हर अंगमान। बिनसे काम क्रोध अहंकार, नानक गुरमुख उतर है पार। प्रभाती महला पंजवा, गुर पूरा पूरी ताकी कला। गुर का शब्द सदा सद अटला, गुर की बाणी जिस मन वसै। दुख दर्द सब ताका नसै,

एको कर जान एहा मत शब्द है सार वे दुविधा माथे पवे शार करणी कीर्त गुरमत सार संत सभा गुण ज्ञान विचार मन मारे जीवित मर जान नानक नदरी नदर पछाण।

मेरा प्रभ रविया सर बैठा ई रघाव माने घाट माने पाठ माने गए पासारी माने बासे नाना भेदी परमत गए संसारी गुर के शब्द इहो मन राता दुबदा सह सुमाणी सब हुक्म हुक्म आपे निरपो समत बिचारी जो जन जान पदे पुरखोत्तम ताची अवगत बाणी नामा कहे जग जीवन पाया हिरदे अलख बिडाणी प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत न जानिया सर्व निरंतर राम रविया राव ऐसा रूप बखानिया गोविंद गाजे शब्द बाजे आनंद रूपी मेरो रामैया हरहाओ बावन भीखू बाने भीखे वास्ते सुख लागला।

कोटं करचंत तोयं लेपनं रक्त चर्मण नवंत द्वारं पी तरहतं बाय रूपं अस्थंबन गोविंद नामं नय सिमरंत अज्ञानी जानंत अस्थिरं दुर्लभ दे उदरहंत साध शरण नानक हर हर हर हर हर हरे जपंत शुभांत तोयं अच्युत गुणज्ञं।

साध संग खल पंडित कंठ रमणी आराम राम माला हस ऊच प्रेम धारणी जीपन जो उत्तम श्लोक उदरणंग नयन नंदनी गुरमंत्र हीन अस जो प्राणी।

ज्ञानं हम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वायरण दयालं सर्वत्र जिया पंच दोख विवर्जित है भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्पमाया।

कंद मूलं बसंते समीप कह रह ततरगते संसार है नानक सोग हरखं व्यापते छलं छिद्रं कोड़ विघ्नं अपराधं किल बिख मलं।

नरक विश्रामं भोजोन्नी परमामण चेत हरणं त्रैलोक गम्यं जब तब शील विदारण अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समामण है।

सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचल खोजो ताके चरण कहो कद पाई है हर का सोईज तन बताए सखी प्रयो पाई है नैन न देखे साध से नैन बेहालिया करन न सुनगी नाद करन मुंद कालिया।

न है तो लूट ले, आराम नाम है लूट। फिर पाशे पछताओगे, प्राण जाएंगे शूट। कबीर ऐसा कोई ना जन्मे हो।

कर करे पीवे निर्मल नीर, बिन हर भगत न मुक्त होए, इउं कहि रमे कबीर। कबीर मन निर्मल भया,

मत घर पूछे कौन है, पर हमारे बार कबीर नाम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर। क्या जानो किस घर किया भयो कबीर, कबीर कबीर सुपने हूँ बरड़ाए कै।

कबीर ऐसा को नहीं मंदर दे जराए, पंचो लड़के मार के रहे राम ल्यो लाए। कबीर ऐसा को नहीं त्यो तन दे वै फूक, अंधा लोग ना जानई रहो कबीरा कूक। कबीर सती पुकारे चेचड़ी सुन हो वीर मसान, लोग सुबाया चल गयो हम तुम काम निदान। कबीर मन पंखी पयो उड़ उड़ दे दिस जाए, जो जैसी संगत मिले सो तय सो फल खाए। कबीर जा को खोजते पायो सोई ठौर, सोई फिर के तू पया जा को कहता और। कबीर मारी मरो कुसंग की केले निकट जो बेर, ओ चूले ओ चीरिए साकत संग ना है।

की मौज में रहो अंत अर आद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, तैबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख के कह कहो तय ना को पतियाए, हर जैसा तैसा उही रहो हरख गुनगा।

कबीर दावे दज होत है निर्दावे रहे निसंक, जो जन निर्दावे रहे तो गणे इंद्र सो रंक। कबीर पाल समोहा सरवर भरा पी न सके कोई नीर, भाग बड़े ते पायो तू पर पर पियो कबीर। कबीर प्रभाते तारे खिसे त्यों

कबीर सतगुर सूर में बायाबान जो एक लागत ही पोए गिर परया परा करे जे शेक। कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई पूम बेकार बिन संगत यो मान।

फलंत ईर साधु संग प्राप्ति लिखिया होए लिलाट। मुक्त पदार्थ पाई है ठाक न अब घट काट, कबीर एक घड़ी आदि करी आदि।

क्या पवे वन कंडा मोड़े हे वसी रब हयाली है जंगल क्या टूंडे हे फरीदा इन्नी निक्की जंगी है हर डूंगर पवे ओम आज फरीदे कूजड़ा सह कोहां थी ओम फरीदा राती वड़ियां

साहिब सच्चे वेख बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान फरीदा जे तन भिरो ना उपजे तो तन जान मसान फरीदा एफस गंदला तरिया खंड लिवाड़ एक राय दे रह गए एक राधी गए उजाड़ फरीदा चार गवाया हंड कह चार

फरीदा कोठे मंडप माड़िया एतना लाए चित मिट्टी पई अतोलवी कोई न होसी मित। फरीदा मंडप माल न लाए मर्ग सतानी चित तार साई जाए संभाल जिथे ही तो वंजना। फरीदा जिन्नी कमी नाए गुण ते कमड़े विसार मत शर्मिंदा थीव ही साई दे दरबार। फरीदा साहिब दी कर चाकरी दिल दी लाए परांद दरवेसा नू लोड़िए रुखां दी जी रांद। फरीदा काले मैंडे कपड़े काला मैंडा वेस गुण ही परिया मैं फिरा लोक कहे दरवेस। तत्ती तोय ना पलवे जेजल टुब्बी दे फरीदा जो डुहागन रब दी चूरें दी चूरे जां कुआरी ता चाओ विवाही ता मामले। फरीदा एहो पछोताओ वत कुआरी ना थी है कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज चिंजू बोड़न ना पीवे उड़न संधि डंज हंस उड़ कोदरे पया।

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पंग गुर प्रसाद सवैये श्री मुख बाक महला पंजवा आदि पुरख करतार करण कारण सब आपे सर्ब रहो भरपूर सगल घट रहो बे आपे व्याप्त देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सर्व की रखिया करे आपे हर पत अविनाशी अवगत आपे आपे उत्पत एक तू ही एक आन नाही तुम पत हर अंत नाही पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भक्त दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हां के बाल बाल बाल बाल सद बलिहार अमृत प्रवाह सार अतुल पंडार पार परे ही ते परे अपर अपार पार अपनु भावन कर मंत्र ना दूसरो धर उपद परलो एक नेमक तो कर आन नाही समसर उजियारो निर्मार कोट प्राशित जागे नाम लीगे हर हर जन नानक भक्त दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार सगल पवन धारे एक ते की ए बिस्तारे पूरे ओ सर्वमय आप है निरारे हर गुण नागी अंत पारे जी जंत सब थारे सगल को दाता एक अलख मुरारे आप की धारण धारे कुदरत है देखारे वर्ण चेन नाही मुख नाम सारे जन नानक भक्त दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार सर्व गुण निधान कीमत न ज्ञान ध्यान ऊचे ते ऊचो जा नीजे प्रभ तेरो थान मन तन तेरो प्राण एक सूत है जहान कम उपमा दे बड़े ते बडान जाने कौन तेरो पेओ अलख अपार देओ अकल कला है प्रभ सर्व को थान जन नानक भक्त दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार निरंकार आकार अशल पूर्ण अविनाशी हरखवंत अनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जा को होए कृपाल सोजन प्रभ तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जान जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परसयो छे जन्म मरण दो ते रहो सत सत हर सत सत सते सत पणिये दूसर आनना आवर पुरख पौरा तन सुनिए अमृत हर को नाम लयत मन सब सुख पाए जे रसन चाख्यो ते जन तृप्त अघाए जे ठाकर सो प्रसन्न पयो सत संगत ते प्यार हर गुरु नानक जिन परसयो तिन सब कुल कियो उधार सच सभा दी बाण सच सच्चे पै तरयो सच्चे तख्त निवास सच तपावस करयो सच सिरजो संसार आप अफुल न फुल्लो रतन नाम अपार की मनो पवे अमुल्लो जे कृपाल होयो गोविंद सर्व सुख तिन हु पाए हर गुरु नानक जिन परसयो ते बौड़ फिर जोन न आए कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन विद उस्तत करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तिर कीम न परिये ब्रह्माद कसनकाद सिख गुण अंत न पाए आगो गयो नहीं जाए पूर सर्व रहो समाए ये काटी सिलक दयाल प्रभ हे जन लगे भगते हर गुरु नानक जिन परसयो ते एत उत सदा मुगते प्रभ दाताओ दातार परयो जाच एक सरना मेरे दान संतरेन जे लग पौजल तरना बिंत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देव दर्श मन चाओ भगत हो मन ठहरावे बरयो चिराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल घर पवन में
ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਵਈਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਚੀ ਦੇ ਮੋਹਫੁਣ ਬਾਂਧੀ ਸੜ ਕਠੋਰ ਕੁਚੀਲ ਕੁਗਿਆਨੀ ਧਾਵਤ ਭ੍ਰਮਤ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਪਾਵਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਜੋਬਨ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਬਦ ਮਤ ਵਿਚਰਤ ਵਿਕਲ ਬਡੋ ਅਭਮਾਨੀ ਪਰ ਥਨ ਪਰ ਅਪਵਾਦ ਨਾਰ ਨਿੰਦਾ ਯਹ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਮਾਏ ਹੇਤਾਨੀ ਬਲਵੰਚ ਸ਼ਬ ਕਰ ਤਿਉ ਪਾਵ ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸੀਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਸੁਚ ਨਾਸਤ ਆਯੋ ਸਰਨ ਜੀ ਕੇ ਦਾਨੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸ੍ਰੀ ਧਰ ਰਾ

सदगुर प्रमाण बिद न सिरयो जग जस दूर बजायो। गुर रामदास कल उचरै तै अपाय अमर पद पायो। जग जितौ सदगुर प्रमाण मन एक तिहायो। तन तन सदगुर अमरदास जिन नाम दिरड़ायो। नामृद नाम निधान रिद ताकी दासी तै सरोवर मिलयो। पुरख भेट्यो अविनासी आदले भगत जित लगत।

फल अमल सतगुर संग निवास गुर रामदास कल उच्चरै तो सहज सरोवर बास गुर जिनको सो प्रसन्न नाम हर जय निवास जिनको गुर सो प्रसन्न दुर्त दूर अंतर नास गुर जिनको सो प्रसन्न मान अभमान निवार जिनको गुर सो प्रसन्न शब्द लग पव जल तारे परचो प्रमाण गुर पायो तिन सके अथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल काब भुगत मुगत सब गुरु लग सतगुर खेमा ताणिया जुग जूथ समाणे अनपो नेजा नाम टेक जित भगत अघाणे गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे इहो राज जोग गुर रामदास तुम हूं रस जाने जनक सोए जिन जान।

की सेव सेव सिद्ध साधक तोर असुर गण तरे ते तीस गुर बचन सुन कन रे सुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर कर तरे उपर लाद गुर मिलत मुन जन रे तरे नारदास संकाद हर गुरमुखे तरह एक नाम लग तजो रस अन रे दास बेनत कहे नाम गुरमुख लह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा सहयुग जिन त्रू पर श्री प्रहलाद भगत को धरियं हस्त कमल माथे पर तरियं अलख रूप जी लखिया ना जाई साधक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी धारो मानस जन्म दे निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रापाई है गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसे बनवारी ते लेना ताप जोत जग तारी।

अवतार जय मसरा जगतारन को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो काल समुद्र पय रूप प्रट कर नाम उदाहरण बसे संत जिस दे दुख दर्द निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई मान भजन जाने पयो ते संसर सोई तारण।

निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद। श्लोक 12 ते वधीक महला पहला। उतंगी पै ओरी गहरी गंभीरी, ससर सुइया किव करी निम्न न जाए थनी, गच जे लगा गड़बड़ी।

सोई ब्राह्मण पूजन जुगत खत्री सो जो कर्मा का सूर पुन दान का करे शरीर खेत पछाणे बीजे दान तो खत्री दर गए प्रमाण लाभ लोभ जे कूड़ कमावे अपना कीता आपे पावे तन नत पाए तनूर ज्यो बालन हड ना बाल सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर त्री संभाल सबनी घटी सोबस सहबन खट न कोए नानक ते सोहागणी जिन्ना गुरमुख प्रगट होए जौ तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ।

ना पदार्थ पाया अतुट परे पंडार। हर गुरबाणी उच्चर है अंत न पारावार। नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार। गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश। इथे ऊंग ना पुख है हर अमृत नाम सुखवास। नानक दुख सुख व्याप्त नहीं जिथे आत्म राम प्रकाश। काम क्रोध का चोलड़ा सब गले आए पाए। एक उपजे एक बिन सजावे हुक्मे आवे जाए। जमन मरण न चुकई रंग लगा दूजे पाए। बंधन बंद पवाईयन करना कछु न जाए। जिनको कृपा तारियन तिना सतगुर मिलिया आए। सतगुर मिले उल्टी पई मर जीव्या सहज सुपाए। नानक भगती रत्या हर हर नाम सुमाए। मानव चंचल मत है अंतर।

हर मंदिर वस्त अनेक है, नाम निद नाम समाल, तन भगवंती नानका जिन्ना गुरमुख लद्दा हर पाल। वडभागी गढ़ मंदिर खोजया, हर गिरदे पाया नाल, मानमुख दहे दिस फिर रहे, अत तिसना लोभ विकार, माया मोह ना चुकई, मर जम्मे वारो वार, सतगुर सेव सुख पाया,

जे अन दिन रहे लिवलाए, जिन्ना प्री प्यार बिन दर्शन क्यों तृप्ती है, नानक मिले सो पाए, गुरमुख एओ मन रहसी है, जिन्ना प्री प्यार क्यों जीवन पिर बहारे, जा सो देखन अपना नानक थीवन पी हरे, जिन्ना गुरमुख अंदर ने हो तै प्रीतम सच्चे लाया, राती अत डे हो नानक प्रेम समाया, गुरमुख सच्ची आस की जिद प्रीतम सच्चा पाई है, आन देना रह आनंद नानक सहज समाई है।

गुरमुख हसै गुरमुख रोवै, जे गुरमुख करे साई भगत होवै, गुरमुख होवै सो करे विचार, गुरमुख नानक पावे पार, जिन्ना अंदर नाम निधान है गुरबाणी विचार, तिनके मुख सद उजले तित सच्चे दरबार, तिन बहिंदियां उड़दियां कदे ना विसरै, जे आप बख्शे करतार, नानक गुरमुख मिले ना विछड़ै, जे मिले सिरजनहार, गुर पीरां की चाकरी महाकरड़ी सुखसार, नदर करे जिसे अपनी तिस लाए हेत प्यार, सतगुर की सेवै।

वे बंगली पौन असले की पई बारी ए पैरों की पांचो नारी पंचम हरख दिसाख सुनावे।

पौरानद गाए अष्टमाल कौशिक संगलाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठे तान कलोल गायन तार मिलावगी ते लंगी देवकरी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहिरी ले पार जा संग लाई पंचो आर जा सुरमानंद पास करे आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरस बाण औ आहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कहे सुवारी पुन आई दीपक की बारी कशेली पट मंजरी टोडी कई अलाप का मोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल औ रामा कामल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कनरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मिल

दूर। कथना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट, देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विकसै वे परवाहो, साचा साहिब साच नाए, पाख्या पाओ अपार।

पंच प्रमाण पंच प्रधान पंचे पावे दरगे मान पंचे सोह है दर राजान पंचा का गुरेक ध्यान। जे को कह करे विचार करते कह करने नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जन सूत। जे को बुझे हुए सच्यार तबले उपर किता पार धरती होर परे होर होर तिस्ते पार तलै।

गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानो लिख लिख धर्म बिचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्र आसन बैठे देवत्यां दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़ रखीसर जो जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग मश पयाले गावन तुदनो रतने उपाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोत महाबलसूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनो गावन जोत पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चितना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई हैपी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता आपना ज्यो तिस दी वड्याई जो तिस पावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पात साहो सहा पात साहेब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोए केवड़ वड्डा डीठा होए कीमत पाए ना।

तेरी अनक तेरी अनक करे हर पूजा जी, तब तापै जपै बेअंता, तेरे अनेक पड़े बो सिमरथ शास्त्र जी। कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू मात पुरख अपरंपर करता जी, तू जेवड़े अवर ना कोई, तू जुग जुग वेको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चर करता सोई, तू द्यापे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करै सो होई, तू द्यापे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सह का जानोई, आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैंडा साई, जो तो पावे सोई थीसी, जो तू देह सोई हाँ पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करह तिन्ना मृतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया।

जप तप संजम धर्म ना कुमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो शर्मा। सोहेला राग गौड़ी देव की महला पहला, एको ओंकार सतगुर प्रसाद, जय कर की

कैसी आरती होए पवखंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहे कहो सहस मूर्त नना एक तोही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही सब मै जोत जोत है सोए तिसदे चरण सब मै चरण होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत सुभावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभत मनो

बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ाओ, गुर हर ध्यान निहाल, गुर पौड़ी बेड़ी गुरु, गुर तुल्हा हर नाव, गुर सर सागर बोए थो, गुर तीर्थ दरियाओ, जित पावे उजली सतसर नामन जाओ। पूरो पूरो आखिए पूरे तख्त निवास, पूरे थान सुहावण पूरे आस निरास, नानक पूरा जे मिले क्यों घटे गुणतास। श्री राग महला पहला। आवहो भैने गल मिले अंक सहेलड़िया, मिलके करे कहानियां समर्थ कंत किया। साचे साहिब सब गुण अवगुण सब असाहा, करता सब को तेरे जोर, एक शब्द बिचारी है जा तू ता क्या होर रहाओ। जाए पुछो सुहागणी तुसी रावया किन्नी गुणी, सहज संतोख सिंगारिया मिठा बोलनी। पिररी सालू ता मिले जा गुर का शब्द सुनी, केतियां तेरियां कुदरती केवड़ तेरी दात, केते तेरे जी जंत सिफत करे दिन रात, केते तेरे रूप रंग केते जात्या जात। सच मिले सच उपजै सच मैं सच समाए, सुरत होवे पत उगवे गुर बचनी पौ खाए। नानक सच्चा पातशाहो आपे ले मिलाए। श्री राग महला पहला। भली सरी जय उबरी होमे मुई कराहो, दूत लगे फिर चाकरी सतगुर का वेसाहो। कल्प त्यागी बाद है सच्चा वे प्रवाहो, मन रे सच मिले पौ जाए। पै बिन निरपौ क्यों थिए गुरमुख शब्द समाए रहाओ, केता आखण आखिए आखण तोट ना होए। मंगण वाले केतड़े दाता को सोए, जिसके जी प्राण है मन वसे सुख होए। जग सपना बाजी बनी खिन में खेल खिलाए, संजोगी मिले किसे विजोगी उठ जाए। ज्योतिष पाना सो थिए अवर ना करना जाए, गुरमुख वस्त विसाही है सच वखर सच रास, जिन्नी सच वणजया गुरपूरे साबास। नानक वस्त पछाण सी सत सबदा जिस पास। श्री राग महल पहला। तात मिले फुन तात कहो, सिफती सिफत समाए, लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ। सच मिले संतोखिया हर जपे कह पाए, पाई रे संत जना की रेण, संत सभा गुर पाईए मुक्त पदार्थ तेण रहाओ। ऊचो थान सुहावना ऊपर महल मुरार, सच करनी दे पाईए दर कर महल प्यार, गुरमुख मन समझाइए आत्म राम विचार। तिरबद कर्म कमाई है आसंदेसा होए, क्यों गुरबिन तृप्ति छुटसी सहज मिले सुख होए। निज कर महल पछाणीए नजर करे मल धोए, बिन गुर महल ना उतरे बिन हर क्यों करवास। एको शब्द विचारी है अवर त्यागे आस, नानक देख दिखाई है हो सत बलिहारे जास। श्री राग महला पहला। त्रिग जीवन दोहागणी मुठी दूजे पाए, कलर केरी कंध ज्यों अहनस किर टह पाए। बिन शब्द सुख ना थिए पिर बिन दुख ना जाए, मुंदे पिर बिन क्या सिंगार। दर कर टोई ना लह दरगे झूठ खुआर रहाओ, आप सुजान ना भुलई सच्चा वड किरसान। पहला तरती साध कै सच नाम दे दान,

सब मुठी हंकार राओ जिनी नाम विसारिया दूजी कर लग दुबदा लागे पच मोए अंतर तृष्णा अग गुर राखे से उबरे होर मुठी तंदै ठग मुई प्रीत प्यार गया मुआ वैर विरोध तंदा थका हो मुई ममता माया क्रोध कर्म मिलै सच पाई गुरमुख सदा निरोध सच्ची कारै सच मिलै गुरमत पलै पाए सो नर जमै ना मरै ना आवै ना जाए नानक दर प्रधान सो दरगह पैंदा जाए श्री राग महल पहला तन जल बल माटी पया मन माया मोहे मनूर औगुण फिर लागू पए पूर्व जावै तूर बिन शब्द परमाई है दुबदा डोबे पूर मन रे सब तर उचित लाए जिन गुरमुख नाम ना बुझिया मर जन्म आवै जाए रहाओ तन सूचा सो आखिया जिसमें साचा नाओ पै सच राती देहुरी जेवा सच सुआओ सच्ची नदर निहाली है बहुण ना पावै ताओ साचे ते पवना पया पवने ते जल होए जल ते त्रिपवन साजिया घट घट जोत समोए निर्मल मैला ना थी शब्द रते पत होए एहो मन साच संतोखिया नदर करे तिस माहे पंच भूत सच पैर ते जोत सची मन माहे नानक अवगुण विसरे गुर राखे पत ताहे श्री राग महला पहला नानक बेड़ी सच की तरिये गुर विचार एक आवै एक जावही पूर परे हंकार मन हठ मती बूढ़ी है गुरमुख सच सोतार गुर बिन क्यों तरिये सुख होए

बिन गुण कामना आवई टह टेरी तनखे है, मेरे मन लै लाहा कर जाहे। गुरमुख नाम सलाही है हमें निवरी पाहे रहाओ। सुन सुन गंडन गंडी है लिख पढ़ बुझै पार, तृष्णा अहनस अगली हमें रोग बेकार। ओह वे प्रवाहो अतोलवा गुरमत कीमत सार, लक्ष्य आण पजे करी लक्ष्यो प्रीत मिलाप। बिन संगत साधना त्रापिया बिन नावै दुख संताप। हर जप जी अरे छुट्टी है गुरमुख जी न आप, तन मन गुर पै वेचिया मन दी आ सिर नाल। त्रिपवन खोज टंडोलिया गुरमुख खोज निहाल, सतगुर मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल। श्री राग महला पहला, मरण की चिंता नहीं जीवन की नहीं आस, तू सर्व जिया प्रतपाल ही लेखे सास गिरास।

मन मानक निर्मोल है, राम नाम पत पाए, मिल सत संगत हर पाई है, गुरमुख हर लिवलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल है सलल समाए। जिन हर हर नाम ना चेतियो सो अवगुण आवे जाए, जे सतगुर पुरख ना भेटियो सो पौजल पचै पचाए, एहो मानक जियो निर्मोल है, इउ कौडी बदलै जाए, जिन्ना सतगुर रस मिलै से पूरे पुरख सुजान, गुर मिल पौजल लंगी है, दरगह पत प्रवान, नानक ते मुख उजले तुन उपजै शब्द निशान, श्री राग महला पहला, वणज करो वणजारियो वखर लेहो समाल, तैसी वस्त विसाही है जैसी निभ है नाल, अगे साहो सुजान है लैसी वस्त समाल, पाई रे राम कहो चितलाए, हर जस वखर लै चलो सहो देखे पति आए, रहाओ जिन्ना रास ना सच है क्यों तिन्ना सुख होए, खोटे वणज वणजे है मन तन खोटा होए, फाही फाथे मिर्ग ज्यो दुख कणो नितरोए, खोटे पोते ना पवे तिन हर गुर दर्श ना होए, खोटे जात ना पाता है खोटना सी जिस कोए, खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए, नानक मन समझ आई है गुर कै शब्द सलाह, राम नाम रंग रतिया पारना परम तिनाह, हर जप लाह अगला निरपव हर मन माह, श्री राग महला पहला कर दूजा, तन जोबन अर फुलड़ा नाठी अड़े दिन चार, पबन केरे पत ज्यों टल टुल जुम्मन हार, रंग मान लै प्यारिया जा जोबन नौ हुला,

मैं मछली कैसे अंत लहा, जह जह देखा तह तह तू है, तुझ ते निकसी फूट मरा। ना जाना मैं ओ ना जाना जाली, जां दुख लागे तां तुझे संभाली रहाओ। तू भरपूर जानिया मैं दूर, जो कश करी सो

पास श्री राग महला पहला कर पंजवा अशल शलाई नह शल नह काओ कटारा कर सके जो साहेब राखे त्यों रहे इस लोभी का जियो टल पल बिन तेल दीवा क्यों जलै रहाओ पोथी प्राण कमाई है पौवटी ए तन पाई है सच बूझण आण जलाई है एहो तेल दीवा इं जलै कर चानन साहेब तौ मिलै रहाओ इत तन लागे बाणिया सुख होवै सेव कमाणिया सब दुनिया आवन जानिया विच दुनिया सेव कमाई है ता दरगह बैसन पाई है कहो नानक बहा लुड़ाई है। श्री राग महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हौ सतगुर सेवी अपना एक मन एक चित पाए सतगुर मन कामना तीर्थ है जिसनों दे बुझाए मन चिंदिया वर पावना जो इच्छा सो फल पाए नाओ त्याई है नाओ मंगी है नामे सहज समाए मन मेरे हर रस चाख तिख जाए जिन्नी गुरमुख चाखिया सहज रहे समाए रहाओ जिन्नी सतगुर सेविया तिन्नी पाया नाम निधान अंतर हर रस रव रहया चूका मन अभमान हृदय कमल प्रगासिया लागा सही ध्यान मन निर्मल हर रव रहया पाया दरगह मान सतगुर सेवन अपना ते वरले संसार हाँ मैं ममता मार कै हर राख्या और तार हाँ तिल कै बलिहारना जिन्ना नामे लगा प्यार सही सुखिए चहु जुगी जिन्ना नाम है खोटिया पार गुर मिलिया नाम पाई है चूकै मोह प्यास हर सेती मन रव रया करी माए उदास जिन्ना हर का साध आया हाँ तिन बलहार जास नानक नदरी पाई है सच नाम गुणतास। श्री राग महला तीजा बहु पेह कर परमाई है मन हृदय कपट कमाए हर का महल ना पावई मर विष्टा माए समाए मन रे गृही माए उदास सच संयम करनी सो करे गुरमुख होए प्रगास रहाओ गुर कै शब्द मन जीतया गत मुक्त करै मैं पाए हर का नाम त्याई है सतसंगत मेल मिलाए जे लख स्त्रियां भोग करै नवखंड राज कमाहे बिन सतगुर सुख ना पावई फिर जोनी पाहे हर हार कंठ जिनी पहरिया गुर चरणी चित लाए तिन्ना पिछै रिद सिद फिरै ओना तिल ना तुमाए जो प्रभावै सो थीऐ अवर ना करना जाए जन नानक जीवै नाम लै हर देवो सहि सुभाए। श्री राग महला तीजा कर पहला जिस ही की सिरकार है तिस ही का सब कोए गुरमुख कार कमावणी सच घट प्रगट होए अंतर जिसकै सच वसै सच

अंतरा दुख भ्रम कटिए सुख प्राप्त होए गुर कै पाणै जो चले दुख ना पावै कोई। गुर के पाणे विच अमृत है सहजे पावै कोई जिन्ना प्रभ तिन पिया होमै विचों खोए नानक गुरमुख नाम तिहाई है सच मिलावा होए। श्री राग महला तीजा जा पिर जाना है अपना तन मन अगे धरे सुहागणी कर्म कमाम दिया से ही कर्म करे सहजे सच मिलावड़ा सच वडाई दे भाई रे गुरबिन भगत ना होए बिन गुर भगत ना पाई।

ना जाए। पूरे पाग सा संगत लहे सतगुर पेटे जिस आए। आन दिन नामे रतिया दुख बिखिया विचों जाए। नानक शब्द मिलावड़ा नामे नाम समाए। श्री राग महला तीजा। आपना भाव दिन पाए उन जिन गुर का शब्द विचार। सत संगति सदा मिल रहे सच्चे के गुणसार। दुबदा मैल चुकाई अन हर राख्या अवतार। सच्ची बाणी सच मानो सच्चे नाल प्यार। मन मेरे हाँ मैं मैल भर नाल। हर निर्मल सदा सोहना शब्द सवारन हार। रहाओ सच्चा शब्द मन मोहया प्रभ आपे लय मिलाए। अंधन नामे रतिया ज्योति जो समाए। ज्योति हूं प्रभ जापदा बिन सतगुर बूझ ना पाए। जिनको पूर्व लिखिया सतगुर भेटिया तिने आए। मिण नामे शब्द मणि दूजे पाए खुआए। तिस बिन घड़ी ना जीवंदी दुखी रहन विहाए। भरम भुलाना अंधला फिर आवे जाए। नजर करे प्रभ अपनी आपे लय मिलाए। सबके सुनदा वेखदा क्यों मुकर पया जाए। पापो पाप कमावंदे पापे पजै पचाए। सो प्रभ नजर न आवई मनमुख बूझ ना पाए। जिस वे खाले सोई वेख नानक गुरमुख पाए। श्री राग महला तीजा। बिन गुर रोग न टुटई हो मैं पीण न जाए। गुर प्रसादी मन वसै नामे रहे समाए। गुर शब्दी हर पाई है बिन शब्द भरम भुलाए। मन रे निज कर वासा होए राम नाम सलाहे तू फिर आवन जान ना होए। रहाओ हर एक को दाता वर्तदा दूजा अवर ना कोए। शब्द सलाही मन वसै सहजे ही सुख होए। सब नदरी अंदर वेखदा जय पावे तैं दे। हम मैं सबा गणत है गणत नो सुख नाहे। बेकी कार कमावनी बेख ही माए समाहे। बिन नामे ठौर ना पाए नी जमपुर दुख सुहाहे। जियो पिंड सब तिसदा तिसै दा आधार। गुर प्रसादी बुझी ता पाए मोख द्वार। नानक नाम सलाहे तू अंत ना पारावार। श्री राग महला तीजा। तिन्ना आनंद सदा सुख है जिन्ना सच नाम आधार। गुर शब्दी सच पाया दुख निवारण हार। सदा सदा साचे गुण गावै साचा नाए प्यार। कृपा करके अपनी दितोन भगत भंडार। मन रे सदा आनंद गुण गाए सच्ची बाणी हर पाई है हर सो रह समाए। रहाओ सच्ची भक्ति मन लाल थी आरता सह सुवाए। गुर शब्दी मन मोहया कहना किछु न जाए। जेह वरती सब सच्चा अमृत पीवै रस गुण गाए। गुरमुखे हो रंग पाई है जिसनों कृपा करे रजाए। संसाए हो

आओ कुदम करे पसपंखिया दिसै नाही काल ओतै साथ मनुख है फाथा माया जाल मुक्ते से ही पाली है जे सच्चा नाम संभाल जो कर छड गवावना सो लगा मन माहे जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता ना है फाथे से ही निकले जे गुर की पैरी पाहे कोई रख ना सके दूजा को ना दिखाए चारे कुंडा पाल के आए पया सरनाए नानक सच्चे पातशाह डुबदा लिया कढ़ाए श्री राग महला पंजवां घड़ी मुहत का पाहुना का स्वरण हार माया काम व्यापिया समझे नाही गावार उठ चलिया पछताया परिया वस जंदार अंधे तू बैठा कंदी पाहे जे होवी पूर्व लिखिया ता गुर का बचन कमाहे रहाओ हरी नाही नह डडरी पक्की वडन हार लै लै दाद पहुतिया लावे कर तैयार जां होवा हो।

एको विसरना जाओ। तंदा सब जलाए कै गुर नाम दिया सच सुआओ। आसा सबे लाहे कै इका आस कमाओ। जिनी सतगुर सेवया तिने अगे मिलिया थाओ। मन मेरे करते नू सलाहे सबे छड सियाणपां गुर की पैरी पाहे रहाओ। दुख पुख न व्यापई जे सुखदाता मन होए। किथी कम न छिजिए जा हृदय सच्चा सोए। जिस तू रखे हाथ दे तिस मार ना सकै कोए। सुखदाता गुर सेवी है सब अवगण कड्डै धोए। सेवा मंगै सेव को लाइया अपनी सेव। साधु संग मसक दे तूठे पावां देव। सब किश वसगत साहेब है आपे करन करेव। सतगुर कै बलिहार नै मनसा सब पूरेव। इको दिसै सज्जनो इको पाई मीत। इकसै दी सामग्री इकसै दी है रीत। इक सस्यो मन मानिया ता होवा निचरचीत। सच खाना सच पहनना टेक नानक सच कीत। श्री राग महला पंजवा। सबे थोक प्राप्ते जे आवे एक हाथ। जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ। गुरते महल प्राप्ते जिस लिखिया होवे मथ। मेरे मन एक सस्यो चित लाए। एक बिन सब धंद है समिथया मोह माए रहाओ। लख खुशियां पात साहिया जे सतगुर नदर करे। निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। जिस तौ पूर्व लिखिया तिन सतगुर चरण गए। सफल मूर्त सफला घड़ी जित सच्चे नाल प्यार। दुख संताप ना लग गई जिस हर का नाम आधार। बहां पकड़ गुर काढ़िया सोई उतरिया पार।

जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिन की शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिनी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग महला पंजवा, मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वसिया मन आए, अंतर जोत प्रगासिया एक सो लिवलाए। मिल साधु मुखी उजला पूर्व लिखिया।

मन किया इच्छा पूरिया पाया नाम निधान अंतर जम इसदा संग करना हर पिछान गुरप्रसादी मुखी उजला जप नाम दान इसनान काम क्रोध लोभ बिनसया तजया सब महान पाया लाहा लाभ नाम पूर्ण होए काम कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपनाए नाम आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरबान सच महल कर पाया गुर का शब्द पहचान भक्त जना को राखदा अपनी कृपा तार हालत पलत मुखी उजले साचे के गुणसार आठ पहर गुणसार दे रते रंग अपार पार ब्रह्म सुख सागर नानक सद बलिहार श्री राग महला पंजवां पूरा सतगुर जे मिले पाइए शब्द निधान कर कृपा प्रभ अपनी जपिए अमृत नाम जन मरण दो काटिए लागे सही ध्यान मेरे मन प्रभ शरणाई पाए हर बिन दूजा को नहीं एको नाम ते आए रहाओ कीमत कहन ना जाइए सागर गुणी अथाओ वड भागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाहो कर सेवा सुख सागर सिर साहा पातशाहो चरण कमल का आसरा दूजा नाही ठाओ मैं तर तेरी पार ब्रह्म तेरे तन रहाओ निमाणिया प्रमाण तू तेरे संग समाओ हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद जी प्राण तन तन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद श्री राग महला पंजवां प्रीत लगी तिस

कर संगत नित साध की गुर चरणी चित लाए रहाओ। नाम निधान त्याई है मस्तक होवै पाग, कार्य सब सवारी है गुर की चरणी लाग। हउ मैं रोग भ्रम कटी है ना आवै ना जाग, कर संगत तू साध की अड़ सड़ तीर्थ नाओ। जियो प्राण मंत्र हरे साचा एहो सवाओ, एथे मिले वडियाईया दरगे पावे थाओ। करे कराए आप प्रभु सब किछ सही हाथ, मारा पे जीवालदा अंतर बाहर साथ। नानक प्रभ सरनागति सर्व कटा के नाथ। श्री राग महला पंजवा, शरण पए प्रभ अपने गुर होवा कृपाल। सतगुर कै उपदेसे है बिनसे सर्व जंजाल, अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल। मन मेरे सतगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी एक निमख ना मनो विसार। रहाओ गुण गोविंद नित गावी है अवगुण कटन हार। बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे विस्थार। सहजे शिव तीरतया पवजल उतरे पार, तीर्थ वर्त लख संजमा

पूरा सतगुर भेटिया बिनस्या सब जंजाल मेरे सतगुरा हौ तुद विटो कुरबान तेरे दर्शन कौ बलिहारण तुस दिता अमृत नाम रहाओ जिन तू सेवया पाओ कर सही पुरख सुजान तिना पिछे छुट्टी है जिन अमृत।

जिन गुर मिलिया सुभाए, सच्चे से तीरतया दरगह बैसन जाए। करते हथ वडियाइया पूर्व लिखिया पाए, सच करता सच करनहार सच साहिब सच टेक। सचो सच वखाणिया सचो बुद्ध विवेक, सर्ब निरंतर रव रहया जप नानक जीवै एक। श्री राग महला पंजवा, गुर परमेसर पूजिय मन तन लाए प्यार। सतगुर दाता जी का सबसे दे आधार, सतगुर बचन कमावणे सच्चा एहो विचार। बिन साधु संगत रतिया माया मोह सबशार, मेरे साजन हर हर नाम संभाल। साधु संगत मन वसै पूर्ण होवै काल रहाओ। गुर समरथ अपार गुर वडभागी दर्शन होए, गोरिया गोचर निर्मला गुर जीवड़े अवर ना कोए। गुर करता गुर करनहार गुरमुख सच्ची सोए, गुर ते बाहर किश नहीं गुर कीता लोड़े सो होए। गुर तीर्थ गुर पार जात गुर मनसा पूर्ण हार, गुरदाता हर नाम दे उदरै सब संसार। गुर समरथ

श्री राग महला पहला कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद आख आख मन वावना ज्यो ज्यो जापै वाए जिसनों वाय सुनाई है सो केवड़ कित थाए आखण वाले जेतड़े सब

तेरा हुक्म ना जापी के तड़ा लिख ना जाने कोए जे सौ सायर मेली है तिल ना पुजावै रोए कीमत कने ना पाईया सब सुन सुन आखै सोए पीर पै कामर सालक साधक सौंदे और शहीद शेख मसाइक काजी मुल्ला दर दर वे सरसीद बरकत तिनको अगली पढ़दे रहन दरूद पुछना साजे पुछना टाहे पुछना दे वैले अपनी कुदरत।

गणत गण आवने आईया सुभावे स्वीकार पाखंड प्रेम ना पाई है खोटा पाज खुवार हर जियो इउ प्रलावे नार तुद पावन सोहागणी अपनी कृपा लह सवार रहाओ गुरसबदी सिंगारिया तन मन पिर कै पास दोए कर जोड़ खड़ी तक सच कह अरदास लाल रती सच पै।

दुबदा छोड़ विकार। हाउ तिन कै बलिहारन है दर सचै सचियार। सीचा ने जो पंखिया जाली बदक हाथ। गुर राखे से उबरे होर फाथे चोगै साथ। बिन नामै चुन सुटी है कोय ना संगी साथ। सचो सच्चा आखी है सचे सच्चा थान। जिनी सच्चा मन्या तिन मन सच ध्यान। मनमुख सूचे जानिए गुरमुख जिन्ना ज्ञान। सतगुर अगे अरदास कर साजन दे मिलाए। साजन मिलिया सुख पाया जम दूत मोए बिख खाए। नावै अंदर हौ वसा नाउ वसै मन आए। बाज गुरु गोबार है बिन शब्द बूझ ना पाए। गुरमति प्रगास होए सच रहै लिवलाए। तिथै काल ना संचरै ज्योति ज्योत समाए। तू है

कथनी झूठी जग पवै रहनी शब्द सो सार केते पंडित जोत की बेदा करै विचार वाद विरोध सलाहने वादे आवन जान बिन गुर कर्म ना छुटसी कह सुने आख बखान सब गुणवंती आखी है मैं गुण नाही कोए हर वर नार सुहावनी मैं भावे प्रभ सोए नानक शब्द मिलावड़ा नावे छोड़ा होए श्री राग महला पहला जप तप संजम साधी है तीर्थ की चैवास पुन दान चंगियाईया बिनसा चे क्या तास जिहा राधे तिहा लुणै बिन गुण जन्म विनाश मुंदे गुण दा सिस होए अवगण त्याग समाई है गुरमत पूरा सोए रहाओ विणरा सीवा पारिया तके कुंडा चार मूल न बूझै अपना वस्त्र ही कर बार विण वखर दुख अगला कूड़ मुठी कूड़ यार लाहा अहन सनौतना परखे रतन विचार वस्त लहै कर अपने चलै कारज सार वणजारिया स्यो वणज कर गुरमुख ब्रह्म विचार संता संगत पाई है जे मेले मिलन हार मिलिया होए ना विछड़ै जिस अंतर ज्योत अपार सच्चा आसन सच रहै सच्चा प्रेम प्यार जिनी आप पछाणिया घर मैं महल सो थाए सच्चे से तीरतिया सचो पल्ले पाए त्रिपवन सो प्रभ जानिया साचो सचै नाए सातन खरी सुहावनी जिन पर जाता संग महली महल बुलाई है सोपर रावे रंग सच सुहागण सा भली पिर मोही गुण संग पूली पूली थल चढ़ा थल चढ़ डूंगर जाओ बन मैं पूली जे फिरा बिन गुर बूझ ना पाओ नामो पूली जे फिरा फिर आवो जाओ पुछो जाए

आए ज्ञान पदार्थ खोया ठग्या मुठा जाए बाबा माया परम पुलाए परम पुली डोहागनी ना पर्यंक समाए रहाओ भूली फिर जस

मैं तुझ बिन अवर ना कोए, मैं तुझ बिन अवर ना भावई, तू भावे सुख होए रहाओ। नाम सलाही रंग स्यों गुर कै शब्द संतोख, जो दिसै सो चल सी कूड़ा मोह ना वेख। वाट वटाऊ आया नित चलदा साथ देख, आखने आखे के तड़े गुरबिन बूझना होए। नाम वडाई जे मिलै सच रपै पत होए, जो तुद पावै से पले खोटा खरा ना कोए। गुर सरनाई छुट्टी है मन मुखोटी रास, अहट तात पात साह की घड़ी है शब्द विगास। आपे परखे पारखू।

आपे हर जग जीवन दाता आपे बस मिलाए जी जनते क्या विचारे क्या को वाक सुनाए गुरमुख आपे दे वड़ियाई आपे सेव कराए देख कुटुंब मोहे लोभाना चल दिया नाल न जाई सतगुर सेव गुण निधान पाया तिस दी कीम ना पाई प्रभ सखा हर जियो मेरा अंते होए सखाई पेई अड़ै जग जीवन दाता मनमुख पत गवाई बिन सतगुर को मग न जाने अंधे ठौर ना काई हर सुख दाता मनी वसिया अंत गया पछताई पेई अड़ै जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया अन दिन भगत करै दिन राती हौं मैं मोह चुकाया जिस स्यों राता तै सो होवै सचे सच समाया आपे नदर करे भाव लाए गुर सबदी बीचार सतगुर सेवे सहज उपजाय हमें तृष्णा मार हर गुण दाता सद मन वसै सच रखिया उर धार प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए नाम निदान हर मन वसै हमें दुख सब जाए सतगुर शब्द सुनाया हम सतबल हार जाओ अपने मन चित कह कहाई अपने मन चित कह कहाए बिन गुरे आप ना जाई हर जियो भगत मच्छर सुखदाता कर कृपा मन वसाई नानक सोभा सुरत दे प्रभु आपे गुरमुख दे वड़ियाई श्री राग महला तीजा हमें कर्म कमाव दे जम डंड लगे तिन आए जे सतगुर सेवन से उबरे हर से ती लिवलाए मन रे गुरमुख नाम ते आए तुर पूर्व करत लिखिया तिना गुरमत नाम समाए रहाओ विण सतगुर प्रतीत ना आवई नाम ना लागाओ पाओ सुपने सुख ना पावई दुख में सवै समाए जे हर हर कीचै बहुत लुचिया कीर्तना मिटिया जाए हर का पाणा भगती मन्या से भगत पय दर थाए गुर शब्द दृढ़ावै रंग स्यों बिन कृपा लया ना जाए जे सौ अमृत नीरी है पी बिखपल लागै ताए से जन सच्चे निर्मले जिन सतगुर नाल प्यार सतगुर का पाणा कमाम दे बिख हमै तज विकार मन हटकतै उपाय ना छूटिया सिमरत शास्त्र सोधो जाए मिल संगत साधु उबरे गुर का शब्द कमाए हर का नाम निधान है जसंत ना पारावार गुरमुख से ही सोह दे जिन कृपा करे करतार नानक दाता एक है दूजा और ना कोए गुर प्रसादी पाई है कर्म प्राप्त होए श्री राग महला तीजा पंखी बिरख सुहावड़ा सच उगै गुर पाए हर रस पीवै सहज रहै उड़ै न आवै जाए

ब्रह्म के बेते शब्द पछाण है हो मैं जात गवाई सोर नर तिन की बाणी गावे कोई न मेटे भाई दैत पुत कर्म धर्म किछ संजम ना पड़े दूजा पाओ न जाने सतगुर भेटे है निर्मल होवा अंदन नाम वखाण है एको पड़े एको ना बूझे दूजा अवर ना जाने खड़ दर्शन योगी सन्यासी बिन गुर परम पुलाए सतगुर सेवै तां गत मित पावे हर जियो मन वसाए सच्ची बाणी से उचित लागे आवन जान रहाए पंडित पढ़ पढ़ वाद वखाण बिन गुर परम पुलाए लख चौरासी फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाए जा नाव चेतै तां गत पाए जा सतगुर मेल मिलाए सत संगत में नाम हर उपजे जा सतगुर मिले सुभाए मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाए सतबलिहारी गुरे अपने विटाओ जे हर से ती चित लाए सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर से ती रंग राता प्रभ निकट वसे सबना घट अंतर गुरमुख वर लै जाता नानक नाम मिले वडियाई गुर कै शब्द पछाता श्री राग महला तीजा सहजै नो सब लोई दी बिन गुर पाया ना जाए पढ़ पढ़ पंडित जोत की थके भेखी परम भुलाए गुर भेटे सहज पाया अपनी कृपा करे रजाए भाई रे गुर बिन सहज ना होए शब्द ही ते सहज उपजाए हर पाया सच सोए रहाओ।

स्वार्थ स्वाओ ना को करे, ना किश होवै काज, चित आवै ओस पार ब्रह्मो, ता निचल होवै राज। जा कहो चिंता बहुत बहुत, देही व्यापै रोग, ग्रस्त कुटुंब पलेटिया, कदे हरख कदे सोग। गौण करे चहो कुंटका, कड़ी ना बैसन सोए, चित आवै उस पर ब्रह्म, तन मन शीतल होए। काम क्रोध मोहे वस किया, किरपन लोग प्यार, चारे किलवख उन अग किए, होवा असर संघार। पोथी गीत कवित किश कदे ना करन धरिया, चित आवै उस पार ब्रह्म, ता निमख सिमरत तरिया। शास्त्र सिमरत वेद चार, मुखागर बिचरे, तपे तपीसर जोगिया, तीर्थ गमन करे। खटकर में खटकर माते दुगणे, पूजा करता नाए, रंग ना लगी पार ब्रह्म, ता सर पर नरके जाए। राज मिलक सिकदारिया, रस भोगन विस्थार, बाग सुहावे सोहणे, चले हुक्म अफार। रंग तमासे बहु विधि, चाए लग रहया, चेतना आयो पार ब्रह्म, ता सर्ब की जून गया। बहुत तनाड्या चारवंत, शोभा निर्मल दीत, मात पिता सुत भाइया, साजन संग प्रीत। लश्कर तरकस

भगवती रहत जुगता, योगी कहत मुक्ता, तपसी तप है राता, मोनि मोन धारी, सन्यासी ब्रह्मचारी, उदासी उदास राता, भगत नमह प्रकारा, पंडित वेद पुकारा, गृहस्थी ग्रस्त धर्माता, एक शब्दी बहुरूप अवधूता, कापड़ी कौते जागूता, एक तीर्थ नाता, निरहार वर्ती अपरसा, एक लूकना देव दर्शा, एक मन ही ज्ञाता, काटना किन ही कहाया, सब कहते हैं पाया, जिस मेले सो भगता, सगल उगत उपावा, त्यागी शरण पावा, नानक गुर चरण पराता, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, श्री राग महला पहला कर तीजा, जोगी अंदर जोगिया तू भोगी।

मात पिता सुत ने हुक नेरा माया मोह सबाई संजोगी आया किरत कमाया करनी कार कराई राम नाम बिन मुक्त ना होई बुढ़ी दूजा हेत कहो नानक प्राणी पहले पहरे छुटै गार चेत दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा पर जोबन मैं मत अहनस काम व्यापिया मन जा रहा मित्रा अंदले नाम ना चित राम नाम कट अंतर नाही होर जाने रस कस मीठे ज्ञान ध्यान गुण संजम नाही जन्म मरोंगे झूठे तीर्थ वर्त सुच संजम नाही कर्म धर्म नहीं पूजा नानक भाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापै दूजा तीजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा सरहंस अलथड़े आए जोबन कटै जरुआ जनैवन जा रहा मित्रा आप कटै दिन जाए अंत काल पछतासी अंदले जां जम पकड़ चलाया सब किश अपना कर कर राखिया खिन मैं पया पराया बुद्ध विसरजी गई सियाणप करे अवगण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चेतो लिवलाए चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा बिरद पया तन खीण अखी अंधना दी सही बन जा रहा मित्रा कन्नी सुने ना वैण अखी अंध जीव रस नाही रहे परा को ताना गुणयंत्र नाही क्यों सुख पावे मन मुख आवन जाना खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसै आए चले क्या मान कहो नानक प्राणी चौथे पहरे गुरमुख शब्द पछाण ओढ़ के आया तिन साहयावन जा रहा मित्रा जर जर वाणा कन एक रती गुण ना समाने आवन जा रहा मित्रा अवगण खड़सन बन गुण संयम जावे चोट ना खावे ना तिस जमण मरना काल जाल जम जोहे ना साकै पाए भगत पै तरना पत सेती जावै सहज समावै सगले दुख मिटावै कहो नानक प्राणी गुरमुख छूटै साचे ते पत पावै श्री राग महला चौथा पहले पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा हर पाया उदर मझार हर त्यावै हर उचरै बन जा रहा मित्रा हर हर नाम समार हर हर नाम जपया राधे विच अग्नि हर जप जीविया बाहर जन्म भया मुख लागा सरसे पिता मात थीविया जिसकी वस्तो ते चेतो प्राणी कर हृदय गुरमुख विचार कहो नानक प्राणी पहले पहरे हर जपिए कृपा तार दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा मन लागा दूजे पाए मेरा मेरा कर पाली एवन जा रहा मित्रा।

संत प्रेम ठगौरी पाए नी जाए गोबिंद मन मोया जियो संतन कै प्रसाद आगाद कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोहया दुख सब जोहया भगत लखन कर वस भए मन सर्व सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इच पुजाया बहुण ना माया होहया कर गए लीने नानक प्रप्यारे संसार सागर नहीं पोहया डखना साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो जिन्ना भाग मथा है से नानक हर रंग मान दो संत कहते पवित्र सुनते सब धन लिखती कुल तारिया जियो जिन कौ साधु संग नाम हर रंग तिन्नी ब्रह्म विचारिया जियो ब्रह्म विचारिया जन्म सवारिया पूर्ण कृपा प्रभ करी कर गै लीने हर जसो दीने जो न तावै नह मरी सतगुर दयाल कृपाल भेटत हरे काम करो लो मारिया कथ न जाय अकथ स्वामी सद कै जाय नानक वारिया श्री राग महला चौथा वणजारा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद हर हर उत्तम नाम है जिन सरिया सब कोय जियो हर जी सबे प्रतपालदा घट घट रमैया सोए सो हर सदा त्याई है तिसबने अवर ना कोय जो मोहे माया चित लाए दे से छोड़ चले दुख रोए जन नानक नाम त्याया हर अंत सखाई होए मैं हर बिने अवर ना कोय हर गुर शरण आई पाई है मन जारिया मित्रा वड भाग प्राप्त होए रहाओ संत जनामिन पाईया हर किने ना पाया नाओ विच हम

तोर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम ते आए। मन हर हर प्रीत रंग लगाए वडभागी गुर पाया गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ। हरे आपे आपो पाएंदा हरे आपे देवै ले हरे आपे परम भुलाएंदा हरे आपे ही मत दे। गुरमुखा मन परगास है से विरले के ई के हम बलिहारी तिन कहो जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल परगासिया मन हर हर उठड़ाओ है मन हर हर जपन करे हर गुर शरण आई भज पाओ जिंदु। सब किल विख दुख पर हरे रहाओ घट घट रमैया मन वसै क्यों पाई है कित भत। गुरपुरा सतगुर भेटिए हरे आए वसै मन चित। मैं तर नाम आधार है हर नामे ते गत मत। मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामे ही जत पत। जन नानक नाम ते आया रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्यावो हर प्रभ सत गुर।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग की वार महला चौथा श्लोका नाल श्लोक महला तीजा रागां विच श्री राग है।

सरै सरैयत करै बिचार, बिन बूझे कैसे पावै पार। सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद, जेह तिर देखा ते तिर मौजूद। महला तीजा गुरसभा एव ना पाई है, ना नेड़ै ना दूर। नानक सतगुर तां मिलै, जा मन रहै हदूर। पौड़ी सप्त दीप सप्त सागरा, नव खंड चार वेद दस अष्ट पुराणा। हर सबना वे तू वरदा, हर सबना पाणा। सब तुझै ते आवै जी जंत, हर सारंग पाणा। जो गुरमुख हरिया राज दे, तिन्हौ कुरबाणा। तू आपे आ वरदा, कर चोज विडाणा। श्लोक महला तीजा। कलो मसाजनी क्या सदाई है, हृदय ही लिख ले हो। सदा साहिब कै रंग रह, कऊ न तूट सने हो। कलो मसाजनी जाए सी, लिखिया पी ना ले जाए। नानक सह प्रीत ना जाए सी, जो तुर छोड़ी सचै पाए। महला तीजा। नदरी आमदा नाल न चलई, वेखो को वे उपाए। सतगुर सच दृढ़ाया, सच रहो लिवलाए। नानक सबदी

दरखड़िया नाल खसमै रतिया माने सुख रलिया होंदे तान नितानिया रह निमाननिया नानक जन्म सकार था जेतन कै संग मिला पौड़ी। तू आपे जल मीना है आपे आपे ही आप जाल तू आपे जल वताएंदा आपे विसे बाल तू आपे कमल अलिप्त है सह हथां विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएंदा एक निमख घड़ी कर ख्याल हर तुद्दों बाहर किश नहीं गुरसबदी वेख निहाल। श्लोक महला तीजा हुक्म ना जान।

नानक नाम रते से रंगले गुर कै सह सुभाए भक्ति रंग न उतरै सहजे रह समाए पौड़ी सिष्ट उपाई सब तो दो आपे रिजक संभाया एक वल छल कर कै खाम दे मोह कूड़क सत त्री ढाया तुद आपे पावे सो करै तुद उतै कम ओए लाया एक ना सच बोया ओन तिना तुट भंडार देवाया हर चेत खाहे तिना सफल है अचेता हथ तडाया सलोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित बेद वखाणै माया मोह सवाए दूजे पाए हर नाम विसारिया मन मूर्ख मिलै सजाए जिन चियो पिंड दिता तिस कबहू ना चेतै जो देंदा रिजक सवाहे जम का फाहा गलो न कटिया फिर आवै जाए मन मुख किशु ना सूजै अंधले पूर्व लिखिया कमाए पूरे पग सतगुर मिलै सुखदाता नाम वसै मन आए सुख माने सुख पैरना सुखे सुख विहाए नानक सो नाओ मनो विसारी है नानक सो नाओ मनो ना विसारी है जित दर सचै सो बा पाए महला तीजा सतगुर सेव सुख पाया सच नाम गुणतास गुरमती आप पछाणिया राम नाम प्रगास सचो सच कमावना वड्याई वड्डे पास जियो पिंड सब तिसका सिफत करे अरदास सचै शब्द सलाहना सुखे सुख निवास जप तप संयम मनै माहे बिन नामै त्रिग जी वास गुरमती ना उपाई मनमुख मोहे विनाश ज्यो पावै त्यों राख तू नानक तेरा दास पौड़ी सब को तेरा तू सब सदा तू सब ना रास सब तुदे पासो मंग दे नित कर अरदास जिस तू दे ते सब किश मिले।

सगल संतन पै वस्त एक मांगो, करो बिनंती मान त्यागो, वार वार जाई लख वरिया, देहो संतन की तूरा जियो, तुम दाते तुम पुरख विधाते तुम समरथ।

जियो रेन संतन की मेरा मुख लागी दुरमत बिन सीख बोध्या पागी सच कर बैस रहे गुण गाए नानक बिन से कूरा जियो माज महला पंजवा विसर नाही ए वड़दाते कर कृपा भगतन संगराते दिन सरैन ज्यो तुद ते आई एहो दान मुहे करना जियो माटी अंधी सुरत समाई सबके दिया पलिया जाई आनंद बिनोद तोज तमासे तुद पावै सो होना जियो जिस दा दिता सब कुछ लैना शक्ति अमृत भोजन खाना से सुखाली शीतल पवना सहज के रंग करना जियो सा बुद्ध दीजै जित विसरै नाही सा मत दीजै जित उते आई सास सास तेरे गुण गावां ओट नानक गुर चरणा जियो माज महला पंजवां सिफत सलाहन तेरा हुक्म रजाई सो ज्ञान ध्यान जोत पाई सोई जप जो प्रभ जियो भावै भाणै पूर ज्ञाना जियो अमृत नाम तेरा सोई गावै जो साहिब तेरे मन भावै तू संतन का संत तुम्हारे संत साहिब मन माना जियो तू संतन की करै प्रतपाला संत खेलै तुम संग गोपाला अपने संत तुद खरे प्यारे तू संतन के प्राणा जियो उन संतन कै मेरा मन कुर्बाने जिन तू जाता जो तुद मन भाने तिन कै संग सदा सुख पाया हर रस नानक तृप्त।

तुमरी आस प्यासा तुमरी तुम ही संग मान लीना जियो। ज्यों बार को पीखी रिया गावे ज्यों नेर तानो तान दे सुख पावे। त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यों हर संग एहो मन पीना जियो। ज्यों अंधार है दीपक परगासा परता चितवत पूर्ण आसा। मिल प्रीतम ज्यों होत आनंदा त्यों हर रंग मन रंगीना जियो। संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गजाया। हर हमरा हम हर के दासे नानक शब्द गुरु साई दीना जियो। माज महला पंजवा अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बिडार नहरिया। अवर साध चक सगले देखे मन हर रस सब ते मीठा जियो। जो जो पीवै सो तृप्तावै अमर होवै जो नाम रस पावै। नाम निदान तसे प्राप्त जे शब्द गुरु मन मूठा जियो। जिन हर रस पाया सो तृप्तया गाना जिन हर साध पाया सो नाहीं डोलाना। तिसे प्राप्त हर हर नामा जिस सबत जिस मस्तक पा बीठा जियो। हर एक साथ आया वरसाने बहुत तेरे तिस लग मुक्त पए कन्हेरे। नाम निदाना गुरमुख पाईऐ कहो नानक विरली डीठा जियो। माज महला पंजवा निद सिद्ध रिद हर हर हर मेरा। जन्म पदार्थ गैर गंभीर है लाख कोट खुशिया रंग रावै जो गुर लागा पाई जियो। दर्शन पेखत पए पुनीता सगलो दारे पाई मीता। आगमा गोचर स्वामी अपना गुर कृपा ते सच त्याई जियो। जा को खोजै सर्व्यो पाए वडभागी दर्शन को विरला पाए। ऊचा पारा गोचर थाना ओ मैल गुरु देखाई जियो। गहर गंभीर अमृत नाम तेरा मुक्त भया जिस दै वसेरा। गुरबंधन तिनके सगले काटे जन नानक सहि समाई जियो। माज महला पंजवा प्रभ कृपा ते हर हर त्यावो प्रभु दया ते मंगल गावो। उठत बैठत सोवत जागत हर त्याई सगल अवरदा जियो। नाम औखद मोको साधु दिया किलब काटे निर्मल थिया। अंध भया निकसी सब पीरा सगल बिनासे दरदा जियो। जिसका अंग करे मेरा प्यारा सो मुक्ता सागर संसारा। सत करे जिन गुरु पछाता सो काहे कौ डरदा जियो। जब ते साधु संगत पाए गुर भेट तहों गई बिलाए। सा सा सर गावै नानक सतगुर ढाक लिया मेरा पड़दा जियो। माज महला पंजवा ओत पोत सेवक संगराता प्रप्रत पाले सेवक सुखदाता। पानी पखा पीसो सेवक कै ठाकर ही काया हर जियो। काट सिरक प्रभ सेवा लाया हुक्म साहिब का सेवक मन पाया। सोई कमावै जो साहिब पावै सेवक अंतर बाहर माहर जियो। तू दाना ठाकर सब जानै ठाकर के सेवक हर रंग मानै। जो किछ ठाकर का सो सेवक का सेवक ठाकर ही संग जाहर जियो। अपने ठाकर जो पहराया बहुर ना लेखा पुछ बुलाया। ते सेवक है नानक कुर्बानी सो गहर गंभीरा गौहर जियो। माज महला पंजवा सब किश घर मैं बाहर नाही। बाहर टोले सो परम पुलाही। गुर प्रसादी जिनी अंतर पाया सो अंतर बाहर सुहेला जियो। चिम चिम वरसै अमृत धारा मन पीवै सुन शब्द बिचारा। आनंद बिनोद करे दिन राती सदा सदा हर केला जियो। जन्म जन्म का विछड़िया मिलिया साध कृपा ते सूका हरिया। सुमत पाए नाम ते आए गुरमुख होए मेला जियो। जल तरंग ज्यों जलै समाया त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया।
कहो नानक परम कटे के वाड़ा बहु न होइए जौला जियो। माज महला पंजवा तिस कुरबाणी जिन तू सुनिया तिस बलिहारी जिन रसना भणिया वार वार जाई तिस विटाओ जो मन तन तो द्यारा दे जियो। तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चल नैन निहाली तिस पुरख दयाल मन देवा तिस अपने साजन जिन गुरमिल सो प्रभ ला दे जियो। सेवड भागी जिन तुम जाने सब कै मद्दे अलिप्त निर्वाणे साध कै संग उन पौ जल तरिया सगल दूत उन साधे जियो। तिन की शरण भरिया मन मेरा मान तान तद मोह अंधेरा नाम दान दीजे नानक कहो तिस प्रभ अगम अगा दे जियो। माज महला पंजवा तू पेड़ साख तेरी फूली तू सूखम होवा अस्थूली तू जल निद तू फेन बुध बुधा तुद बिन अवर ना पालिए जियो। तू सूत मणिए पी तू है तू गंठी मेर सिर तू है आद मद अंत प्रभ सोई अवर ना कोई दिखा लिए जियो। तू निर्गुण सरगुण सुखदाता तू निर्वाण रसिया रंग राता अपने कर्तव्य आपे जाने आपे तुद संभालिए जियो। तू ठाकुर सेवक फुन आपे तू गुप्त प्रगट प्रभ आपे नानक दास सदा गुण गावे एक पूरी नजर निहालिए जियो। माज महला पंजवा सफल सो बाणी जित नाम वखाणी गुर प्रसाद किने विर लै जानी तन सो वेला जित हर गावत सुनना आए ते परवाना जियो। से नेत्र प्रवान जिनी दर्शन पेखा से कर भले जिनी हर जस लेखा से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले हम बलतन संग पछाणा जियो। सुन साजन मेरे मीत प्यारे सा संग खिन माहे उधारे किल विख काट हुआ मन निर्मल मिट गए आवन जाना जियो। दोए कर जोड़िक बिनो करी जय कर कृपा डुबदा पत्थर लीजै नानक कौ प्रभ पै कृपाला प्रभ नानक मन पाणा जियो। माज महला पंजवा अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परम गत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो। सुख पाया दुख दूर पराना संत रसन हर नाम वखाना जल थल नीर भरे सर सुबर बिरथा कोय ना जाए जियो। दया तारी

वन त्रिण त्रि पवन की तोन हरिया, करण हार खिन पीतर करिया। गुरमुख नानक तसै अराधे, मन की आस को जाए जियो। माज महला पंजवा, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंदप तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई, ता पौ केहा काड़ा जियो। तुमरी कृपा ते तुद पछाणा, तू मेरी ओट तू है मेरा माणा, तुझ बिन दूजा और ना कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। जी जंत सब तो देव पाए, जिजत पाना तित तलाए, सब किश कीता तेरा होवै, नाही किश असाड़ा जियो। नाम ते आए महा सुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन सीत लाया। गुर पूरे वजी वाधाई, नानक जिता बिखाड़ा जियो। माज महला पंजवा, जी प्राण ब्रह्मन अधारा, भग जीवै गुण गाए अपारा। गुण निदान अमृत हर नामा, हर त्याए त्याए सुख पाया जियो। मनसा तार जो करते आवै, साध संग जन मरण मिटावै। आस मनोरथ पूर्ण होवै, भेटत गुरदर साया जियो। आगम्या गोचर किशमित नहीं जानी, साधक सिद्ध ते आवै ज्ञानी। खुदी मिट्टी चूका पोलावा, गुरमन ही मह प्रगटाया जियो। आनंद मंगल कल्याण निधाना, सुख सहज हर नाम वखाना। हुए कृपाल स्वामी अपना, ना ओ नानक कर मैं आया जियो। माज महला पंजवा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, तू प्रीतम ठाकर अत भारी। तुमरे कर्तव तुम ही जाना, हो तुमरी ओट गोपाला जियो। गुण गावत मन हरिया होवै, कथा सुनत मन सगली खोवै। पेटत संग साध संतन कै, सदा जपो दयाला जियो। प्रभ अपना सास सास सुमारो, एह मत गुर प्रसाद मन धारो। तुमरी कृपा ते होए परगासा, सर्व मया प्रतपाला जियो। सत सत सत प्रभ सोई, सदा सदा सद आपे होई। चलत तुम्हारे प्रगट प्यारे, देख नानक पए निहाला जियो। माज महला पंजवा, हुक्मी वरसन लागे मेहा, साजन संत मिल नाम जपेहा। शीतल सांस है सुख पाया, ठांड पाई प्रभ आपे जियो। सब किश बहुतो बहुत उपाया, कर कृपा प्रभ सगल रजाया। दात करो मेरे दातारा, जी जंत सब तरापे जियो। सच्चा साहेब सच्ची नाई, गुर प्रसाद तिस दाते आई। जन्म मरण पै काटे मोहा, बिनसे शोक संतापे जियो। सास सास नानक साला हे, सिमरत नाम काटे सफा हे। पूर्ण आस करी खिन पीतर, हर हर हर गुण जापे जियो। माज महला पंजवा, आओ साजन संत मीत प्यारे।

कर कृपा प्रभक्ति लावो सच नानक अमृत पिए जियो। माज महला पंजवा भये कृपाल गोविंद गोसाई मेघ वरसै सबनी थाई दीन दयाल सदा कृपाला ठांड पाई करतारे जियो। अपने जी जंत प्रतपारे जो बारक माता सुमारे दुख भंजन सुख सागर स्वामी देख सगल आहारे जियो। जल थल पूर रहा मेहरबाना सद बलिहार जाइए कुर्बाना रैन दिन सो तिसदा त्याई जे खिन मैं सगलो उदारे जियो। राख लिए सगले प्रभ आपे उतर गए सब शोक संतापे नाम जपत मंतन हरियावल प्रभ नानक नदर निहारे जियो। माज महला पंजवा जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे से अस्थल सोयन चौबारे जिथे नाम ना जपिए मेरे गोइंदा सेई नगर उजाड़ी जियो। हर रुखी रोटी खाए संभाले हर अंतर बाहर नजर निहाले खाए खाए करे बद फैली जान विसु की वाड़ी जियो। संता सेती रंग ना लाए साक्त संग विकर्म कमाए दुलब देह खोई अज्ञानी जड़ अपनी आपो पाड़ी जियो। तेरी शरण मेरे दीन दयाला सुख सागर मेरे गुरु गोपाला कर कृपा नानक गुण गावै राखो शर्मिया साड़ी जियो। माज महला पंजवा चरण ठाकर के हृदय समाणे कल कले सब दूर पयाने सात सुख।

माज महला पंजवां सबे सुख पए प्रभु तुठे गुरपुरे के चरण मन मुठे सह समाद लगी लवे अंतर सोरा सोई जाने जियो आगमा गोचर साहिब मेरा कड़कड़ अंतर वरतै नेरा सदा लिप्त जिया का दाता को विरलाया पछाणै जियो प्रभ मृणै की हे निशानी मन को सच्चा हुक्म पछाणी सह संतोख सदा तृप्ता से अंध खसम कह पाणै जियो हथी दित्ती प्रभ देवन हारै जन्म मरण रोग सब निवारे नानक दास किए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माणे जियो माज महला पंजवां कीनी दया गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे मन माही अंगीकार की आतन करतै दुखा डेरा टाहया जियो मंतन वसिया सच्चा सोई बिखड़ा थान न दिसै कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आया जियो जो किश करे सो आपे आपै बुद्ध सियाणप किछु ना जापै अपने संता नो आप सहाई प्रभ भरम भुलावा लाया जियो चरण कमल जन काया धारो आठ पहर राम नाम वापारो सहज आनंद गावै गुण गोविंद प्रभ नानक सर्ब समाया जियो माज महला पंजवां सो सच मंदर जे सच त्याई है सोरदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा तरत सुहावी जित वसै हर जन सच्चे नाम विटो कुरबानो जियो सच वडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म ना कहना जाई त्याए त्याए जीवै जन तेरे सच शब्द मन मानो जियो सासा लाहन वडपागी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है रंग रते तेरा तुद भावै सच नाम निशानो जियो सच्चे अंत न जाने कोई थान थन अंतर सच्चा सोई नानक साहित्य आई है सद ही अंतर जामी जानो जियो माज महला पंजवां रैन सुहावड़ी दिन सुहेला जप अमृत नाम संत संग मेला घड़ी मूर्त सिमरत पल वन्या जीवन सफलत थाई जियो सिमरत नाम दोग सब लाथे अंतर बाहर हर प्रभ साथे पै पाओ परम खोया गुरपूरै देखा सबनी जाई जियो प्रभ समरथ वड ऊचा पारा नौनद नाम परे पंडारा आद अंत मध प्रभ सोई दूजा लवै न लाई जियो

माज महला पंजवां अथ है तू है आगे आपे जी जंत्र सब तेरे थापे तुद बिन अवर ना कोई करते मैं तारे ओट तो मारी जियो रसना जब जब जी वै स्वामी पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी जिन सेव्या तिन ही सुख पाया सो जन्म ना जुवै हारी जियो नाम अवखद।

जो सदी से वह सो गुर मिलने चल कहना। प्रेम भगत जिसके मन लागी गुण गावे अंध न जागी। बहा पकड़ो ते स्वामी मिले जिसके मस्तक लेना। चरण कमल भगता मन मुठे विन परमेश्वर सगले मुठे। संत जना की धूड़ नित बांछे नाम सचे का गहना। उठत बैठत हर हर गाई है जिस मृतवार ने चल पाई है। नानक प्रभ हो दयाला तेरा कीता सहना। राग माज अष्टपदिया महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। शब्द रंगाए हुक्म सवाए सच्ची दरगह महल बुलाए। सच्चे दीन दयाल मेरे साहेबा सच्चे मन पतिया बनिया। हाँ वारी जियो वारी शब्द सुहावने आ। अमृत नाम सदा सुखदाता गुरमती मन वसावने आ। रहाओ ना को मेरा हो किसकेरा साचा ठाकरो त्रिपवन मेरा। हो मैं कर कर जाए कनेरी कर अवगण पछोतावने आ। हुक्म पछाणे सो हर गुण वखाणे गुर कै शब्द नाम निशाणे। सबना कादर लेखा सच्चै छूटस नाम सुहावने आ। मनमुख पूला ठौर ना पाए जमदर बद्दा चोटा खाए। बिन नामे को संग ना साथी मुक्ते नाम ते आवने आ। सागत कूड़े सच ना पावे दुबदा बांदा आवे जावे। लिखिया लेखना मेटे कोई गुरमुख मुक्त करावने आ। पेयड़ पिर जातो नाही झूठ विछुनी रोवे ताही। अवगण मुठी महल ना पाए अवगण गुण बखसावने आ। पेयड़ जन जाता प्यारा गुरमुख बूझे तत बिचारा। आवन जाना ठाक रहाए सच्चा नाम समावने आ। गुरमुख बूझे कथ कहावे सच्चे ठाकर साचो पावे। नानक सच कह बेनंती सच मिलै गुण गावने आ। माज महला तीजा कर पहला कर्म होवे सतगुरु मिलाए। सेवा सुरत शब्द चित लाए। हौ मैं मार सदा सुख पाया माया मोह चुकावने आ। हौ वारी जियो वारी सतगुर कै बलिहारने आ। गुरमती प्रगास हुआ जी अंदर हर गुण गावने आ। रहाओ तन मन खोजे ता ना उपाए तावत राखे ठाक रहाए। गुर की बाणी अंदर गावे सहजे पद करावने आ। इस काया अंदर वस्त असंखा गुरमुख साच मिलै ता वेखा। नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनह शब्द वजावने आ। सच्चा साहेब सच्ची नाई गुर प्रसादी मन वसाई। आन दिन सदा रह रंगराता दर सच्चा सोजी पावने आ। पाप पुन की सार न जानी दूजे लागी परम पुलाणी। अज्ञानी अंदा मग न जाने फिर आवन जावने आ। गुर सेवा ते सदा सुख पाया हाँ मैं मेरा ठाक रहाया। गुरसाखी मिटिया अंधियारा बजरक पाड़ खुलावने आ। हाँ मैं मार मन वसाया गुर चरणी सदा चित लाया। गुर कृपा ते मन तन निर्मल निर्मल नाम ते आवने आ। जीवन मरना सब तो दैताई जिस बख्शे तिस दे वड़ियाई। नानक नाम ते आए सदा तू जम्मन मरण सवारने आ। माज महला तीजा मेरा प्रभ निर्मल अगमे अपारा। बिन तकड़ी तोले संसारा गुरमुख होवे सोई बुझे गुण कै गुणी समावने आ। हाँ वारी जियो वारी हर का नाम मन वसावने आ। जो सच लागे से अंदन जागे दर सच्चै सोभा पावने आ। रहाओ आप सुनै तै आपे वेखै जिसनु नदर करे सोई जन लेखै। आपे लाए ले सो लागै गुरमुख सच कमावने आ। जिस आप भुलाए सो किथे हथ पाए पूर्व लिखिया सो मिटना ना जाए। जिन सतगुर मिलिया से वडभागी पूरे करम मिलावणिया। पेयड़ तन अंदन सुती कंत विसारी अवगण मुत्ती।
ਆਂਦਨ ਸਦਾ ਫਿਰੈ ਬਿਲ ਲਾਂਦੀ, ਬਿਨ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਪੇਈਅੜ ਐਸੁਖ ਦਾਤਾ ਜਾਤਾ, ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ। ਸੇ ਸੁਹਾਵੀ ਸਦਾ ਪਿਰ ਰਾਵੈ, ਸੱਚ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਾਵਣਿਆ। ਲਖ ਚੌਰਾਸੀ ਜੀ ਉਪਾਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਿਸ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ। ਕਿਲਬੇ ਕਾਠ ਸਦਾ ਜਨ ਨਿਰਮਲ, ਦਰ ਸੱਚੈ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਿਆ। ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਤਾਂ ਗਿਣਦੀ ਐ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਫੁਨ ਦੂਐ ਤੀਐ। ਆਪੇ ਬਖਸ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਆਪ ਕਰੇ ਤੈਂ ਆਪ ਕਰਾਏ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਆਪੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇੱਕੋ ਆਪ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਸੰਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖਾ ਤਾਇਹੋ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਾਜੋ ਸਹਿ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਏਕੋ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਵਣਿਆ। ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਇਕਤ ਘਰ ਆਇਆ, ਸੱਚੈ ਰੰਗ ਰੰਗਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਓ ਇਹੋ ਜਗ ਭੂਲਾ ਤਾਂ ਆਪ ਭੁਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਵਿਸਾਰ ਦੂਜੈ ਲੋਭਾਇਆ। ਆਂਦਨ ਸਦਾ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਮ ਭੂਲਾ, ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਜੋ ਰੰਗਰਾਤੇ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤੇ, ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਜੁਗਚਾਰੇ ਜਾਤੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਹਰ ਚੇਤੈ ਨਾਹੀ, ਜੰਪਰ ਬੱਧਾ ਦੁਖ ਸਹਾਹੀ। ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਕਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਮਨਮੁਖ ਪਾਪ ਪਚਾਵਣਿਆ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਰਾਤ

पूर्ण पूर रहया सब आपे गुरमत नदरी आवणिया आपे आप निरंजन सोई जिन सिर जीतन आपे गोई नानक नाम समाल सदा तू सहजे सच समावणिया। माज महला तीजा से सच लागे जो तुद पाए सदा सा सेवै सह सुभाए सच्चै शब्द सच्चा सालाही सच्चै मेल मिलावणिया। हाँ वारी जियो वारी सासा लाहणिया सच ते आए न से सच राते सच्चे सच समावणिया। रहाओ जह देखा सच सबनी थाई गुर प्रसादी मन वसाई तन सच्चा रसना सच राती सच सुन आख वखानणिया। मनसा मार सच समाणी इन मन डीठी सब आवण जानी सतगुर सेवे सदा मन नि चलो निज कर वासा पावणिया। गुर कै शब्द हृदय दिखाया माया मोह सब जलाया सचो सच्चा वेख सालाही गुर शब्दी सच पावणिया। जो सच राते तन सच्ची लिव लागी हर नाम समालै से वड भागी सच्चै शब्द आप मिलाए सत संगत सच गुण गावणिया। लेखा पढ़िया जे लेखे विच होवै ओह अगम्या गोचर शब्द शुद्ध होवै आन दिन सच शब्द सालाही होर कोई ना कीमत पावणिया। पढ़ पढ़ थाके सांत ना आई तृष्णा जाले शुद्ध ना काई बिख विहाजै बिख मोह प्यासे कूड़ बोल बिख खावणिया। गुर प्रसादी एको जाना दूजा मार मन सच समाणा नानक एको नाम वरतै सब अंतर गुर प्रसादी पावणिया। माज महला तीजा वर्ण रूप वरतै सब तेरे मर मर जमै फेर पवै कणेरे तू एको नहि चलो अगम्या पारा गुरमति बूझ बुझावणिया। हाँ वारी जियो वारी राम नाम मन वसावणिया जिस रूप ना रेखिया वर्ण ना कोई गुरमति आप बुझावणिया। रहाओ सब एका जोत जाने जे कोई सतगुर सेवे प्रगट होई गुप्त प्रगट वरतै सब थाई ज्योति ज्योत मिलावणिया। तिसना यगन जलै संसारा लोभ अवमान बहुत हंकारा मर मर जन्मै पत गवाए अपनी बिरथा जन्म गवावणिया। गुर का शब्द को विरला बूजै आप मारे तांत्र पवन सूजै फिर ओह मरै ना मरना होवै सहजे सच समावणिया। माया मह फिर चेतना लाए गुर कै शब्द सद रह समाए सच सा लाहे सब घट अंतर सचो सच सुहावणिया। सच सा लाही सदा हजूरे गुर कै शब्द रहया परपूरे गुर प्रसादी सच नदरी आवै सच्चे ही सुख पावणिया। सच मन अंदर रहया समाए सदा सच नि चलो आवै ना जाए सच्चे लागै सो मन निर्मल गुरमति सच समावणिया। सच सालाही अवरना कोई जित सेवै सदा सुख होई नानक नाम रते विचारी सचो सच कमावणिया। माज महला तीजा निर्मल शब्द निर्मल है बाणी निर्मल जोत समहे समाणी निर्मल बाणी हर सा लाही जप हर निर्मल मैल गवावणिया। हाँ वारी जियो वारी सुखदाता मन वसावणिया हर निर्मल गुर शब्द सा लाही शब्दो सुनत सा मिटावणिया। रहाओ निर्मल नाम वसिया मन आए मन तन निर्मल माया मोह गवाए निर्मल गुण गावे नित साचे के निर्मल नाद बजावणिया।
ਨਿਰਮਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਮੁਵਾ ਤਿੱਥੈ ਮੋਹ ਨਾ ਮਾਇਆ। ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਅਤ ਨਿਰਮਲ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ, ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਸੇਵੇ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੇ ਧੋਵੈ। ਨਿਰਮਲ ਵਾਜੈ ਅਨਹਤ ਤੁਨ ਬਾਣੀ, ਦਰ ਸੱਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸਭ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ, ਨਿਰਮਲ ਮਨੁਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰੋਵੈ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਵਡਭਾਗੀ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਿਆ। ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਸ਼ਬਦੇ ਸੋ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਮਨ ਤਨ ਮੋਹੈ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਮਲ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਮੁਖੀ ਉਜਲ ਸੱਚ ਕਰਾਵਣਿਆ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਏ, ਮੈਲਾ ਚੌਕਾ ਮੈਲਾ ਥਾਏ, ਮੈਲਾ ਖਾਏ ਫਿਰ ਮੈਲ ਵਧਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਮੈਲ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਮੈਲੇ ਨਿਰਮਲ ਸਭ ਹੁਕਮ ਸਵਾਏ, ਸੇ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਹਰ ਸਾਚੇ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਤਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੈਲ ਚੁਕਾਵਣਿਆ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੋਵਿੰਦ ਉਜਲ ਉਜਲ ਹੰਸਾ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਮੇਰੀ ਮਨਸਾ। ਮਨ ਉਜਲ ਸਦਾ ਮੁਖ ਸੋ ਹੈ, ਅਤ ਉਜਲ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣਿਆ। ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਓ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਪੈ ਉਜਲ ਹਉਮੈ ਮਲ ਜਾਏ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਮਨੁਆ ਨਾਚੈ ਭਗਤ ਦਿਰੜਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਮਨ

माया मोहे जोहया जम काले, माया मोह इस मने निचाए अंतर कपट दुख पावने आ। गुरमुख भगत जा आप कराए तन मन राता सह सुभाए, बाणी वजाए शब्द वजाए।

दूजै पाए दुख पावणिया, जिस अंतर प्रीत लगै सो मुक्ता, इंद्री वस सच संजम जोता, गुर कै शब्द सदा हर त्याए, एहा भगत हर पावणिया। गुरमुख भगत जुगचारे होई, होरत भगत ना पाए कोई, नानक नाम गुर भगती पाईऐ, गुर चरणी चित लावणिया। माज महला तीजा, सच्चा सेवी ससा लाही, सच्चे नाए दुख कभी नाही, सुखदाता सेवन सुख पायन, गुरमत मन वसावणिया। हाँ वारी जियो वारी, सुख सह समाध लगावणिया, जो हर सेवै से सदा सोहै, शोभा सुरत सुहावणिया। राओ सब को तेरा भगत कहाए, सही भगत तेरे मन पाए, सच बाणी तुदै सालाहनो, रंग राते भगत करावणिया। सब को सच्चे हर जियो तेरा, गुरमुख मिलै तां चूकै फेरा, जां तुद पावै तां नाए रचावै, तू आपे नाउ जपावणिया। गुरमती हर मन वसाया, हरक सोक सा मोह गवाया, एक सस्यों लिव लागी सदही, हर नाम मन वसावणिया। भगत रंग राते सदा तेरे चाए, नवनिद नाम वस्या मन आए, पूरे भाग सतगुर पाया, सब दे मेल मिलावणिया। तू दयाल सदा सुखदाता, तू आपे मेलै गुरमुख जाता, तू आपे देवै नाम वडाई, नाम रते सुख पावणिया। सदा सदा साचे तुद सा लाही, गुरमुख जाता दूजा को नाही, एक सस्यों मन रहा समाए, मन मनै मनै मिलावणिया। गुरमुख होवै सो सा लाहे, साचे ठाकर वे प्रवाहे, नानक नाम वसै मन अंतर, गुर सबदी हर मिलावणिया। माज महला तीजा, तेरे भगत सोहै साचे दरबारे, गुर कै शब्द नाम सवारे, सदा आनंद रहै दिन राती, गुण कै गुणी समावणिया। हाउ वारी जियो वारी, नाम सुन मन वसावणिया, हर जियो सच्चा ऊचो ऊचा, हाउ मैं मार मिलावणिया। रहाओ हर जियो साचा साची नाई, गुर प्रसादी किसै मिलाई, गुर शब्द मिलै से विछड़ै नाही, सहजे सच समावणिया। तुझते बाहर कछु ना होए, तू कर कर वेख्या जाणै सोए, आपे करे कराए करता, गुरमत्या मिलावणिया। कामण गुणवंती हर पाए, पै पाए सिंगार बनाए, सतगुर सेव सदा सोहागण, सच उपदेश समावणिया। शब्द विसारण

खावणिया इस तन मैं मन को गुरमुख देखै भाए भग जाह मैं सोखै सिद्ध साधक मोन धारी रहे लिवलाए तिन पी तन मैं मना दिखावणिया आप कराए करता सोई होर के करे कीते क्या होई नानक जिस नाम देवै सो लेवै नामो मन वसावणिया माज महला तीजा इस गुफा मैं खुट भंडारा तिस विच वसै हर लख अपारा आपे गुप्त प्रगट है आपे गुर शब्दी आप वजावणिया हौ वारी जियो वारी अमृत नाम मन वसावणिया अमृत नाम महारस मीठा गुरमती अमृत पियावणिया रहाओ हौ मैं मार बजर कपाट खुलाया नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया बिन शब्द नाम ना पाए कोई गुर कृपा मन वसावणिया गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया अंतर चानण अज्ञान अंधेर गवाया ज्योति ज्योत मिली मन मानिया हर दर सोभा पावणिया शरीरो पालण को बाहर जाए नाम ना लहै बहुत वेगार दुख पाए मनमुख अंधे सूजै नाही फिर घेरे आए गुरमुख वथ पावणिया गुर प्रसादी सच्चा हर पाए मन तन वेखै हो मैं मैल जाए बैस सुथान।

दोवै मार जाए एकत घर आवै गुरमत सहज समावणिया घर ही माहे दूजे पाए अनेरा चानन होवै छोड़ै हो मैं मेरा प्रगट शब्द है सुखदाता अंदन नाम ते आवणिया अंतर ज्योत।

अंदर महल रतनी परे भंडारा गुरमुख पाए नाम अपारा। गुरमुख बन जे सदा वापारी लहा नाम सद पावने आ। आपे वथ राख आपे दे गुरमुख बन जाय के ई के। नानक जिस नदर करे सो पाए कर कृपा मन वसावने आ। माज महला तीजा हरे आपे मेले सेव कराए गुर कै शब्द भाव दूजा जाए। हर निर्मल सदा गुणदाता हर गुण मैं आप समावने आ। हाँ वारी जियो वारी सच सच्चा हिरदय वसावने आ। सच्चा नाम सदा है निर्मल गुरसबदी मन वसावने आ। रहाओ आपे गुरदाता कर्म विधाता सेवक सेवै गुरमुख हर जाता। अमृत नाम सदा जन सो है गुरमत हर रस पावने आ। इस गुफा मैं कथान सोहाया पूरे गुर हों मैं भरम चुकाया। अंदन नाम सलाहन रंग राते गुर कृपा ते पावने आ। गुर कै शब्द एहो गुफा विचारे नाम निरंजन अंतर वसै मुरारे। हर गुण गावै शब्द सुहाए मिल प्रीतम सुख पावने आ। जम जा गाती दूजे भाए कर लाए नामो पूले दे सजाए। कड़ी मोहत का लेखा लेवै रतियो मासा तोल कढ़ावने आ। पेयड़ प्रचेते नाही दूजे मुठी रोवै ताही। खरी कुवाल्यो क्रूप कुलखणी सुपने पर नहीं पावने आ। पेयड़

अवर ना कोई, गुर प्रसाद करे नाम देवै, नामे नाम समावणे आ। तू आपे सच्चा सिरजनहारा, भगती परे तेरे भंडारा, गुरमुख नाम मिले मन पीजै, सह समाद लगावणे आ। आन दिन गुण गावां प्रभ तेरे, तोसा लाही प्रीतम मेरे, तुद बिन अवर ना कोई जाचा, गुर प्रसादी तू पावणे आ। आगमया गोचर मित नहीं पाई, अपनी कृपा करै तू लह मिलाई, पूरे गुर कै शब्द तिहाई है, शब्द सेव सुख पावणे आ। रसना गुणवंती गुण गावै, नाम सलाहे सच्चे पावै, गुरमुख सदा रह रंग राती, मिल सच्चे सोभा पावणे आ। मनमुख कर्म करे अहंकारी, जुवै जन्म सब बाजी हारी, अंतर लोभ महा गोबारा, फिर आवणे जावणे आ। आपे करता दे वडियाई, जिनको आप लिख तुर पाई, नानक नाम मिलै पौ भंजन, गुर सबदी सुख पावणे आ। माज महला पंजवां घर पहला, अंतर अलख न जाई लखिया, नाम रतन लै गुजा रखिया, आगमै गोचर सब ते ऊचा, गुर कै शब्द लिखावणे आ। हाँ वारी जियो वारी, कल मैं नाम सुनावणे आ, संत प्यारे सच्चे तारे, वडभागी दर्शन पावणे आ। रहाओ साधक सिद्ध जिसै को फिरदे, ब्रह्मे इंद्र त्याय निहरदे, कोट तीसा खोजै तां कहो, गुरमिल हिरदै गावणे आ। आठ पहर तुद जापे पवना, धरती सेवक पायक चरना, खानी बाणी सर्ब निवासी, सबना कै मन पावणे आ। साचा साहिब गुरमुख जापै, पूरे गुर कै शब्द संजापै, जिन पिया से तृपता से, सच्चे सच्चा गावणे आ। तिस घर सहजा सोई सोहेला, आनंद विनोद करे सदकेला, सो धनवंत

तुद जेवड़ दाता है वरना स्वामी लवै ना कोई लावण्या। जिस तू तुठा सो तुद त्याए, साजना का मंत्र कमाए। आप तरै सगले कुल तारे, तिस दरगह ठाग ना पावण्या। तू वड्डा तू उचो उचा, तू बेअंत वत मूचो मूचा। हाँ कुर्बानी तेरे वन्या, नानक दास दसावण्या। माज महला पंजवा, कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता, कौन सो ज्ञानी कौन सो भगता। कौन सो गिरही कौन उदासी, कौन सो कीमत पाए जियो। किन बिद बाधा किन बिद छूटा, किन बिद आवन जावन तूटा। कौन कर्म कौन निहकर्मा, कौन सो कह कहाए जियो। कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सनमुख कौन वे मुखिया। किन बिद मिली है किन बिद बिछरै, एह बिद कौन प्रगटाए जियो। कौन सो अखर जित आवत रहता, कौन उपदेश जित दुख सुख समसहता। कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याए, किन बिद कीर्तन गाए जियो। गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता, गुरमुख ज्ञानी गुरमुख भगता। धन गिरही उदासी गुरमुख, गुरमुख कीमत पाए जियो। हम मैं बाधा गुरमुख छूटा, गुरमुख आवन जावन तूटा। गुरमुख कर्म गुरमुख निहकर्मा, गुरमुख करे सो सुभाए जियो। गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया। गुरमुख मिलिया मनमुख बिछरै, गुरमुख बिद प्रगटाए जियो। गुरमुख अखर जे तावत रहता, गुरमुख उपदेश दुख सुख समसहता। गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याए, गुरमुख कीर्तन गाए जियो। सगली बणत बनाई आपे, आपे करे कराए थापे। एक स्ते होयो अनंता, नानक एक समय समाए जियो। माज महला पंजवा, प्रभ बनासी ता क्या काड़ा। हर भगवंता ता जन खरा सुखाला। जी प्राण मान सुखदाता, तू करै सोई सुख पावण्या। हाँ वारी जियो वारी, गुरमुख मंतन पावण्या। तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला, तुम संग लवै ना लावण्या। रहाओ तेरा कीता जिस लागै मीठा, घट घट घट घट पार ब्रह्म तिन जन डीठा। थान थनंतर तू है तू है, इको एक वरतावण्या। सगल मनोरथ

अंध कूप ते कंडे चाड़े कर कृपा दास नजर निहाले गुण गावे पूर्ण अविनाशी कह संतोट न आवणिया।

हर जेठ जोड़न दा लोड़िया जिस अगे सब निवान हर सज्जन दावन लग्या किसे ना देई बन माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन रंग सबे नारायण जेते मन पावन जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन जो प्रभ कीते अपने से ही कहिए तन अपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन साधु संग प्राप्ते नानक रंग माणन हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसकै भाग मथन आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर ना हो ना जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संदियास दुया पाए विगुची है गल पई सो जम की फास जिहा बीजै सो लुण मथे जो लिखे आस रैण विहानी पछताणी उठ चली गई निरास जिन कौ साधु भेटिया सो दरगह होए खलास कर किरपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आसार सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ा व्या दिसन सबे शार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वन तेन प्रभ संग मौलिया समरथ पुरखिया पार हर मिलने नो मन लोचदा करम मिलावन हार जिनी सखिए प्रभ पाया हों तिनकै सबर हार नानक हर जी माया कर शब्द सवारन हार सावन तिना सुहागनी।

पुकारिता, उड़िया हंस दसायरा, आया गया मोया ना, पिछे पतल सद्यो का, नानक मन मुख अंध प्यार, वाजगुरु डुबा संसार। महला पहला। दस बाल तन बी श्रवण, तीसा का सुंदर कहावे, चालीसी पर होए, पचासी पग खिसै।

मुंडम डिठ मैं नानक जग तू एका तवलहार पौड़ी तू करता पुरख्या गम है आप सृष्टि उपाती रंग परंग उपार जना बहु बहु विद पाती तू जाने जिन्हें उपाई है सब खेल तुमाती एक आवे खजाए उठ बिन्ना में मर जाती गुरमुख रंग चिलू लिया रंग हर रंग राती सो से वो सत निरंजनो हर पुरख बिदाती तू आपे आप सुजान है वड पुरख बढ़ाती जो मन चेत तुद त्याय दे मेरे सच्चिया बल बल हों तन जाती श्लोक महला पहला।

तै भुखा तिहाया, सह सहु संसार है मर जमै आया जाया। बिर सतगुर मोह न टुटई, सब थके कर्म कमाया। गुरमति नाम ते आई है सुख रजा जा तुद पाया। कुल उधारे अपना तन जने दी माया, शोभा सुरत सुहावनी जन हर सेती चित लाया। श्लोक महला दूजा। अखी बाजो वेखना मन कन्ना सुनना, पैरा बाजो चलना मन हथा करना। जीबै बाजो बोलना ओ जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण कै तौ खसमै मिलना। महला दूजा। दिसै सुनिया जानिए सौ ना पाया जाए, रोहला टुंडा अंदला क्यों गल गै तहाए। पह के चरण कर भाव के लोइन सुरत करे, नानक है सियाणिए इवकंत मिलावा होए पौड़ी। सदा सदा तू एक है तो दूजा खिल रचाया, हम मैं गुरु ब्यो पाए कै लोभ अंतर जनता पाया। ज्यो पावे त्यो रख तू सब करे तेरा कराया, इकना बक्सै मेल लै गुरमति तुदै लाया। एक खड़े करे तेरी चाकरी, विणना मैं होर ना पाया। होर कार वेकार है एक सच्ची कार लाया, पुत कलत कुटंब है एक लिप्त रहे जो तुद पाया। ओहे अंदरों बारो निर्मले सच्चै नै समाया। श्लोक महला पहला। सोने कै पर्वत गुफा करी, कै पानी पै आलो, कै विच धरती कै आकाशी उर्द्रहा सिर पार। पुर कर काया कपड़ पहरा, तोवा सदाकार। बग्गा रत्ता पी अला काला, बेदा करी पुकार। होए कुचील रहा मलतारी, दुर्मत मत विकार। ना हाँ ना मैं ना हाँ होवा, नानक शब्द विचार। महला पहला। वस्त्र पखाल पखाले काया, आपे संयम होवै। अंतर मैल लगी नहीं जाने, बारो मलमल तोवै। अंधा फूल पया जम जाले, वस्त्र पराई अपनी कर जाने। हम मैं विच दुख काले, नानक गुरमुख हम मैं टुटै। ता हर हर नाम ते आवै, नाम जपे नाम वारा दे, नामे सुख समावै पवड़ी। काया हंस संजोग, मेल मिलाया तिन्ही किया विजोग। जिन उपाया मूर्ख भोगे भोग, दुख सबाया सुख उठे रोग। पाप कमाया हर खो सोग, विजोगो पाए पाया। मूर्ख गणत गणाए झगड़ा पाया, सतगुर हथ नबेड़ झगड़ चुकाया। करता करे सोहोग, न चले चलाया।

करे असगा कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे सुवा जेते जी जीवे लै साहा जीवा ले ताके असा नानक ज्यों ज्यों सच्चे पावे त्यों त्यों दे गिरा। महला पहला एक मांसाहारी एक तृण खाए एक नाशक्ति अमृत पाहे एक मिटिया मैं मिटिया खाहे एक पौण सुमारी पौण सुमार एक निरंकारी नाम आधार। जीवे दाता मरे ना कोए नानक मुठे जाहे नाही मन सोए। पौड़ी पूरे गुर की कार कर्म कमाई है गुरमती आप गवाए नाम ते आई है। दूजी कार लग जन्म गवाई है विणना में सब विस पैजै खाई है। सच्चा शब्द सलाहे सच समाई है विण सतगुर सेवे नाही सुख निवास फिर फिर आई है। दुनिया खोटी रास कूड़ कमाई है नानक सच खरा साला है पत स्यों जाई है। सलोक महला पहला तुद पावे ता वावे गावे तुद पावे जल नावे जा तुद पावे ता करे बेपूता सिंगी नाद वजावे जा तुद पावे ता पड़े कतेबा मुला सिह कहावे जा तुद पावे ता होवे राजे रस कस बहुत कमावे जा तुद पावे तेग बगावे सिर मुंडी कट जावे जा तुद पावे जाए दसंतर सुन गल्ला कर आवे जा तुद पावे ना इरचावे तुद पाने तू पावे नानके कह बेनंती होर सगले कूड़ कमावे। महला पहला जा तू वड्डा सब वड्याईया चंगे चंगा होई जा तू सच्चा ता सब को सच्चा कूड़ा कोई ना कोई। आखण वेखण बोलण चलण जीवन मरना तात हुक्म साज हुक्म विच रखै नानक सच्चा आप। पौड़ी सतगुर सेवन संग भरम चुकाई है सतगुर आखै कार सो कार कमाई है सतगुर होए दयाल ता नाम ते आई है। लाहा भगत सो सार गुरमुख पाई है मनमुख कूड़ गुबार कूड़ कमाई है सच्चे दह दर जाए सच चमाई है। सच्चा अंदर महल सच बुलाई है नानक सच सदा सच्यार सच समाई है। श्लोक महला पहला कलकाती राजे का साई धर्म पंख कर उडरिया कूड़िया मावस सच चंद्रमा दिसै नाही कह चढ़िया। हाँ पाल विकुन्नी होई अंधेरे राहो ना कोई विच हम मैं कर दुख रोई कहो नानक किन बेदगत होई। महला तीजा कल कीरत प्रगट चानन संसार गुरम कोई उतरे पार जिसनो नदर करे तिस देवै नानक गुरमुख रतन सो लेवै। पौड़ी भगता तै सह सारियां जोड़ कदे ना आया करता आपा भुल है ना भुलै किसै दा भुलाया। भगत आपे मेलिया नु जिन्नी सचो सच कमाया संसारी आप खोआया नु जिन्नी कूड़ बोल बोल बिख खाया। चलन सार ना जाननी काम क्रोध विस वधाया भगत करन हर चाकरी जिन्नी अंदर नाम ते आया। दासन दास होए कै जिनी विचों आप गवाया उना खसमै कै दर मुख उजले सच्चे शब्द सुहाया। सलोक महला पहला साबाही सालाहा जिनी त्याया एक मानो सेई पूरे।

सो किश करै, हुक्मे आवै हुक्मे जाए, आगै पाछै हुक्म समाए, हंस हित आसा असमान, तिस विच भूख बहुत नैसान, पौ खाना पीना आधार, विण खादे मर होहे गवार, जिसका कोए कोई कोए कोए, सब को तेरा तू सबना का सोए, जाके जी जंत धन माल, नानक आखण बिखम विचार, गौड़ी महला पहला, माता मत पिता संतोख, सत भाई करे हो विसेख, कहना है किश कहन ना जाए, तो कुदरत कीमत नहीं पाए, रहाओ सरम सुरत दुए ससर पहे, करनी कामण कर मन लए, साह संयोग वियह वियोग, सच संतत

जय कारण तट तीर्थ जाही रतन पदार्थ कट ही माही पड़ पट पंडित बाद वखाण है भीतर होंदी वस्त न जाण है हो ना मुआ मेरी मुई बलाए ओह ना मुआ जो रया सुमाए कहो नानक गुरब्र।

तीन अवस्था कह वखियान, तुरिया अवस्था सदगुर ते हर जान। राम भगत गुर सेवा तरना, बहुड़ जन्म ना होए है मरना रहाओ। चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत शास्त्र पंडित मुख सोई। बिन गुर अर्थ विचार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जां कह हृदय वसिया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई। हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद। जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा महे निराश बुझाया। दीना नाथ सर्व सुखदाता, नानक हर चरणी मन राता। गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रहै सुखाली। बाजी यो संसारो, लब लोभ मुच कूड़ कमावै, बहुत उठावै पारो। तू काया मैरुल दी देखी, ज्यों तारी उपर इशारो। सुन सुन सिख हमारी, सुकिरत कीता रहसी मेरे जियड़े। बहु नया व्यवारी रहाओ। हाँ तुझे आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी। निंदा चिंदा करै पराई, झूठी लाए तबारी। वेल पराई जो है जियड़े, करै चोरी बुरियारी। हंस चलिया तू पिछे रही है, छुट्टड़ हुई है नारी। तू काया रही है सुपनंतर, तुद क्या कर्म कमाया। कर चोरी मैं जाकश लिया, ता मन भला पाया। हालत ना सोबा, पलत ना टोई।

बिन बूझे तन मन फीका होए, बिना मैं दुखिया चलिया रोए। रसना हरस चाखिया सह सुभाए, गुर कृपा ते सच समाए। साचे राती

ना कोए गुर शब्दी मन नाम निवास, नानक सच भांडा जिस शब्द प्यास। गौड़ी गुआरे री महला तीजा, एक गावत रहे मन साध ना पाए। हाँ मैं विच गावे बिरथा जाए, गावन गावे जिन नाम प्यार। साची बाणी शब्द विचार, गावत रह जे सतगुर पावै। मंतन राता नाम सुहावै रहाओ। एक गावै एक भगत करे, नाम ना पावै बिन असनेह। सच्ची भगत गुर शब्द प्यार, अपना पर राखिया सदा उरतार। भगत करै मूर्ख आप जनावै, नच नच टपै बहुत दुख पावै। नचै टपै भगत ना होए, शब्द मरै भगत पाए जन सोए। भगत वछल भगत कराए सोए, सच्ची भगत विचों आप खोए। मेरा प्रभ साचा सब जाणै, नानक बख्शे नाम पछाणै। गौड़ी गुआरे री महला तीजा,

आप भुला के प्रभ आप भुलाया, एहो जियो वडाणी चाकरी लाया, महा दुखटे बिरथा जन्म गवाया, किरपा कर सतगुरु मिलाए, को नाम चेते विचों भरम चुकाए, नानक नाम जपे नाव नाव निध पाए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, जिन्ना गुरमुख ते आया तिन पूछो जाए, गुर सेवा ते मन पति आए, से तनवंत हर नाम कमाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, हर हर नाम जपो मेरे पाई, गुरमुख सेवा हर काल थाई पाई रहाओ, आप पछाणे मन निर्मल होए, जीवन मुक्त हर पावै सोए, हर गुण गावै मातूतम होए, सहजे सही समावै सोए, दूजे पाए ना सेव्या जाए, हमै माया महा बिख खाए, पुत कुटंब गृह मोया माए, मन खयंदा आवै जाए, हर हर नाम देवै जन सोए, अंदन भगत गुर सबदी होए, गुरमत विरला बूझै कोए, नानक नाम समावै सोए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, गुर सेवा जुग चारे होई, पूरा जनकार कमावै कोई, अखुट नाम तन हर तोट न होई, ऐथै सदा सुख दर सोभा होई, ए मन मेरे भरम ना कीजै, गुरमुख सेवा।

गुरमुख नाम निदान लै दरगह लै छाए रहाओ लख चौरासी भरम दे मन अठिया वह जाए गुर का शब्द ना चीनियो फिर जोनी पाए गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वसया मन आए अंदर भगती रतिया हर नामे सुख समाए मन शब्द मरे प्रतीत होए हो मैं तजे वेकार जन नान करमी पाईया नु हर नामा भगत भंडार गौड़ी बैरागण महला तीजा पे अड़ा दिन चार है हर हर लिख पाया सोभावंती नार है गुरमुख गुण गाया पेवकड़ै गुण समलै साहुरै वास पाया गुरमुख सह समाणिया हर हर मन पाया ससरै पेय पिर वसै कहो किद बिद पाईऐ आप निरंजन अलख है आपे में लाइय रहाओ आपे ही प्रभ देह मातु हर नाम ते आईऐ वडभागी सतगुर मिलै मुखे अमृत पाईऐ हो मैं दुबदा बिनस जाए सहजे सुख समाइए सब आपे आवरदा आपे नाए लाइए मनमुख गर्भ ना पायो अज्ञान अयाने सतगुर सेवा ना करे फिर पछताने गर्भ जोनी वास पाए दे गर्भे गर जाने मेरे करते एवै भामदा मनमुख प्रमाणे मेरा हर प्रभ लेख लिखाया तुरमस्तक पूरा हर हर नाम ते आया भेटिया गुरसूरा मेरा पिता माता हर नाम है हर बंधु बीरा हर हर बख्श मिलाए प्रभ जन नानक कीरा गौड़ी बैरागण महला तीजा सतगुर ते ज्ञान पाया हर तत् बिचारा मत मलीन प्रगट भई जपना मुरारा सेव सकत मिटाइया चूका दियारा तुरमस्तक जिन कौ लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित बिद पाईऐ संत जना जिस देख हो जीवा हर बिन चसा ना जीवती गुर मिल्यो हर रस पीवा रहाओ हाँ हर गुण गावा नित हर सुनी हर हर गत कीनी हर रस गुर ते पाया मेरा मन तन लीनी तन तन गुर सतपुरख है जिन भगत हर दीनी जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी गुण दाता हर राय है

जब गुर मिलिया तब मन वस आया, तावत पंच रहे हर त्याया, अंदर नगरी हर गुण गाया। सतगुर पग तूर जिन्ना मुख लाई, तन कूड ते आगे हर लिवलाई, ते हर दरगह मुखी उज्जल पाई। गुर सेवा आप हर पावै, कृष्ण बल भद्र गुर पग लग त्यावै, नानक गुरमुख हर आप तरावै। गौड़ी गुआरे री महला चौथा, हर आपे जोगी डंडा तारी, हर आपे रव रहया बनवारी, हर आपे तप तापै लाए तारी। ऐसा मेरा राम रहया भरपूर, निकट वसै नाही हर दूर रहाओ। हर आपे शब्द सुरत धुन आपे, हर आपे वेखै विकसै आपे, हर आप जपाए आपे हर जापे। हर आपे सारंगी अमृत तारा, हर अमृत आप पिया बनहारा, हर आप करे आपे निस्तारा। हर आपे बेड़ी तुलहा तारा, हर आपे गुरमति निस्तारा, हर आपे नानक पावे पारा। गौड़ी बैरागण महला चौथा, साओ हमारा तू तनी, जैसी तू रास दे तैसी हमले, हर नाम जय रंग स्यों जे आप दयाल होए दे। हम वन जारे राम के, हर वणज करावै दे रासरे रहाओ। लहा हर भगतन खटिया, हर सच्चे सा मन पाया, हर जप हर वखर लद्या, जम जा गाती नेड़ ना आया। होर वणज करै वापारिये, अनंत तरंगी दुख माया, ओए जिहै वणज हर लाया, फल ते हाथन पाया। हर हर वणज सो जन करे।

नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजे अर सब माया, कह बंदे कह डान ले कह नरपत मर जाया। तन तन सेवा सफल सतगुरु की, जित हर हर नाम जप हर सुख पाया। नित सौदा सूद कीचे बहु भांत कर, माया कह ताई जा लाहा दे ता सुख मने तोटे मर जाई। जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई। जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे। जिस हरे आप कृपा करे सो वेचे सिर गुरिया गै। जन नानक हर रस तृप्त आ फिर भूख ना लागे। गौड़ी बैरागण महला चौथा, हमरे मन चित हर आस नित, क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा जन प्रीत लाई सो जानता। हमरे मन चित हर बहुत प्यारा, हों कुर्बानी गुरे अपने जिन विछड़िया मेलिया मेरा सृजनहारा।

हमरे अवगुण बहुत बहुत है, बहु बार बार हर गणत ना आवै। तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श लह हर भावै। हम अपराधी राखे गुरसंगति, उपदेश दियो हर नाम छड़ावै। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोले तब विस्म हो जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंधु मेरा सखा सखाए। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सत गुर संग कीरे हम थापे। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चुके सब सोग संतापे। गौड़ी बैरागण महला चौथा, कंचन नारी में जियो लुप्त है। मोह मीठा माया, घर मंदिर कोड़े खुशी, मन अनरस लाया। हर प्रभ चेतना आवई, क्यों छूटा मेरे हर राया। मेरे राम एह नीच कर्म हर मेरे, गुणवंता हर हर दयालो। कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे रहाओ। किस रूप नहीं किस जात नहीं, किस ढंग ना मेरा। क्या मोहले बोले गुण बिहून, नाम जपया ना तेरा। हम पापी संग गुर उबरे, पुन सतगुर केरा। सब जियो पिंड मुख नक दिया, वर्तन कौ पानी। अन खाना कपड़ पहनन दिया, रस अन पोगाणी। जिंदिए सो चेतना आवई, पशु हौ कर जानी। सब कीता तेरा वर्तदा, तू अंतर जामी। हम जंत विचारे क्या करे, सब खेल तुम स्वामी। जन नानक हट विहाजिया, हर गुलम गुलामी। गौड़ी बैरागण महला चौथा, ज्यो जननी सुत जन पालती। राखे नदर मझार, अंतर बाहर मुख दे ग्रास। खिन खिन पोचार, त्यों सतगुर गुर सिख राखता। हर प्रीत प्यार मेरे राम, हम बारक हर प्रभ की है इयाने। तन तन गुरु गुर सतगुर पादा, जिन हर उपदेश दे किए सियाने। रहाओ जैसी गगन फिरंती उड़ती, कपरे बागे वाली। ओ राखे चीत पीछे बिच बचरे, नित हृदय सार समाली। त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की, गुर सिख रखे जी नाली। जैसे काती तीस बतीस है, विच राखे रस।